0: a traditional music piece entitled Salibis ng Nayon, and that was rendered to us in instrumental version by the late Richard Tan, and was actually used in a fashion show back in the day. We continue to share to you information about the upcoming election, and this is in the many languages that we speak here in multicultural Australia.
1: Handa ka na bang bumoto? Ang halalang pederal ay inihayag na. Kung binago mo kamakailan ang iyong pangalan o tirahan, naglabing walong taong gulang, o naging isang mamayan ng Australia, kailangan mo i-update ang iyong detalye ng pagpapatala o mag-enroll upang makaboto bago ang ikawalo ng gabi sa Lunes. Bisitahin ang aec.gov.au o kumuha ng enrollment form sa limang tanggapan ng AEC at ibalik ito sa AEC bago ang ikawalo ng gabi sa Lunes. Ang iyong boto ay makakatulong sa paghubog sa anyo ng Australia. Otorisado ng Electoral Commissioner, Canberra.
2: Είστε έτοιμοι να ψηφίσετε? Οι ομοσπονδιακές εκλογές έχουν ανακοινωθεί. Εάν αλλάξατε πρόσφατα το όνομα ή την διεύθυνσή σας, συμπληρώσατε τα 18 ή γίνατε Αυστραλός πολίτης, πρέπει να ενημερώσετε την εγγραφή σας με τα νέα στοιχεία σας ή να εγγραφείτε για να ψηφίσετε πριν από τις 8 το βράδυ την Δευτέρα. Επισκεφτείτε το aec.gov.au ή λάβετε μια αίτηση εγγραφής από οποιοδήποτε γραφείο της Αυστραλιανής Εκλογικής Επιτροπής AEC και επιστρέψτε την στην Επιτροπή πριν από τις 8 το βράδυ την Δευτέρα. Η ψήφο σας θα συμβάλλει στην διαμόρφωση της Αυστραλίας. Εγκρίθηκε από τον Εκλογικό Επίτροπο Καμπέρα.
0: Information in the many languages that we speak here in multicultural Australia, and this is in regards to the upcoming elections.
3: क्या आप मतदान के लिए तैयार हैं? फेडरल चुनावों की घोषणा हो चुकी है. अगर आपने हाल ही में अपना नाम या पता बदला है, आप 18 वर्ष के हुए हैं या आप एक ऑस्ट्रेलियन नागरिक बने हैं, तो आपको सोमवार को रात 8 बजे से पहले अपने नामांकन विवरण अपडेट करने होंगे या मतदान के लिए अपना नाम दर्ज कराना होगा. aec.gov.au पर जाएं या AEC के किसी भी कार्यालय से अपना नामांकन फॉर्म ले लें और सोमवार को रात 8 बजे से पहले उसे भरकर AEC को भेज दें. आपके वोट से ऑस्ट्रेलिया का स्वरूप बनाने में सहायता मिलेगी. चुनाव आयुक्त कैनबरा द्वारा अधिकृत.
4: 연방 선거일이 발표되었습니다. 최근 개명 혹은 주소 변경을 했거나 18살이 되었거나 호주 시민권자가 된 성인은 월요일 오후 8시까지 본인의 등록사항을 업데이트하거나 선거인 등록을 마쳐야 합니다. ac.gov.au를 방문하거나 AEC 사무소에서 등록 양식을 받아 월요일 오후 8시까지 작성된 양식을 AEC에 제출하세요. 여러분의 투표가 호주의 미래를 만듭니다. 캔버라 선거관리위원회 위원장의 승인을 받았습니다.
5: 您准备好投票了吗？联邦大选的日期已经公布。如果您最近更改了姓名或地址，或刚满18岁，或者新近成为澳大利亚公民，您必须更新自己的登记资料，或在周一晚上8点前登记参与投票。请访问 aec.gov.au 或前往任何一个澳大利亚选举委员会办事处索取登记表，并在周一晚上8点前填好寄回。您的选票将帮助打造澳大利亚的未来。选举专员于堪培拉授权。
0: 98.5 2 000 FM. Resilience and Well-being Radio, sharing to you music for you to be able to just relax at this time and enjoy the moment.

0: pozivamo vas da doživite srce hrvatske zajednice u hrvatskom klubu Kralj Tomislav.
1: Pranam vam sabke. Hum Shishirendu Kumar Jha, Sydney, Australia se baj rahal chi. Aaj ke din aitihasik din hai je aaj Sydney, Australia mein apan sabke bhasha maithili mein program hum sab shuru kar rahal chi. Aa ekta navin radio channel जिनका जकर नाम छै मिथिला गूंज ऐसा प्रारंभ भ रहल अछि। प्रत्येक श्रोतागण के हमरा तरफ से आभार जे अपने सब ई कार्यक्रम सुनने के लेल अपन रेडियो सेट ऑन केलौ। हमरा संगे छै थाय चारिटा गेस्ट। सबसे पहिने हमर सहयोगी श्री यतेंद्र गुप्ता जी छै।
2: नमस्कार, प्रणाम।
1: नवनीत झा जी छथि।
3: प्रणाम सब गोटा के, नमस्कार।
1: संध्या झा जी छथि।
4: प्रणाम सब गोटा के।
1: और खुशबू झा छथि।
5: प्रणाम सब गोटा के।
1: तो ई कार्यक्रम जे छै से एहि तरह से आगा बढ़त जे कियाकि हम सब स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर एहि प्रोग्राम के शुरुआत कऽ रहल छी। तऽ हम सब सर्वप्रथम स्वतंत्रता सेनानी सबके श्रद्धांजलि अर्पित करब, फेर मैथिली के जे देशभक्त गीत छै ओ सब सुनब, और मिथिला महोत्सव के विषय में कुछ बातचीत हेतै। हमरा सब संगे गेस्ट सब छथि, किछु मैथिली के गीत संगीत हेतै संगे संगे, और मिथिला की छै, कतौ सँ आबि रहल छै, और एहि प्रोग्राम के एहि कार्यक्रम के की आवश्यकता छलैए, एहि विषय पर बातचीत हेतै। तऽ आउ हम सब एहि प्रोग्राम के शुरुआत करै छी। सबसँ पहिने सिडनी के में आए एखन टेम्परेचर है 12 डिग्री, और एत के वेदर में कनिक हल्का फुल्का बारिश जका माहौल बन रहा है। और एक के बाद हमर सबके जे अगला प्रोग्राम है ओमे हम सब एक अपन सबके जब जय जय भैरव जे हर शुभ कार्य से पहिने सुनल जाए वो गाना हम सब सुन रहा है।

जय जय भैरवी, माता भगवती के चरण में प्रणाम। मिथिला मैथिली हम सब शाक्त छी और माता जानकी शक्ति स्वरूपा छथि, तैं जय जय भैरवी के कोनो नीक काज से पहिने गेनाय बहुत अवश्यम्भावी छै। कलका दिन भारत के लेल स्वतंत्रता दिवस छलैया और ई दिवस छै जहिया भारत अपन स्वतंत्रता दिवस मनबैत अछि। आर मिथिला के तरफ से सेहो असंख्य ज्ञात अज्ञात बहुत सारे एहन सेना सेनानी सब छलथि जे कारावास में संघर्ष में और बलिदान में कोनो तरीका से पहुँचा नहीं रहलथि। आइ हम हुनका सबके तरफ से तिरंगा के नमन करै छी और अपने सबके किछु मिथिला के जे सेनानी छलथि उनके विषय में बात करै छी। पहला नाम छन पंडित रामनंदन मिश्र के, जे दरभंगा क्षेत्र से अबै छथि और भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग ले रहे थे। हजारीबाग कारागार में जयप्रकाश नारायण के संगे पंडित रामनंदन मिश्र ओहि कारावास से एतेक साहसिक रूप से कार्य कैले छे ओतय से अंग्रेज सबके छक्का छोड़ा दिलखिन। दोसर नाम छन सूरज नारायण सिंह, मधुबनी के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी या सामाजिक सेवी, जे जनहित में या राष्ट्र के सेवा में अपन जीवन अछावर कऽ दिलथि। तेसर नाम से अपने सब परिचित है, इनकर नाम छन जननायक कर्पूरी ठाकुर। समस्तीपुर के धरती पर जन्मल कर्पूरी ठाकुर जी भारत छोड़ो आंदोलन में सहभागी भेलथि और 26 महीना लगभग के कारावास में रहलथि। बाद में सार्वजनिक जीवन में सेहो सामाजिक न्याय सादगी एहि तरह के सपन जीवन व्यतीत कैलथि। और चारिम जे जिनकर बलिदान जे छै से आइयो याद कैल जाइ छै, शहीद जुब्बा साहनी, जिनकर नाम पर मुजफ्फरपुर में रेलवे स्टेशन छै, पार्क के नाम छै। उनका 11 मार्च 1944 में उनका फांसी दऽ देल गेलनि। ओ ई चारिटा नाम मात्र एकटा प्रतीक अछि। मिथिला देश भरि मे एहन असंख्य स्त्री पुरुष छलाह जिनकर नाम इतिहास के कोनो किताब में नहीं भेटे छन। हम ओहि सब स्वतंत्रता सेनानी के प्रणाम करे छियनि, प्रत्येक वीर के शत शत नमन। और ऐसे पहिने कि हम आगा बढ़ी, अपने सबसे आग्रह अछि जे अपने सबसे हमरा फोन कऽ सकै छी, बात कऽ सकै छी, अपन मैसेज भेज सकै छी। हमर नंबर अछि 0426-399-461। नंबर के हम फिर से रिपीट करै छी 0426-399-461। अहाँ सब हमर सबके वेबसाइट www.mithilaculturalsociety.au सेहो विजिट करू और ओहि पर अपन फीडबैक अवश्य छोड़ू। आओ अब समय अछि एकटा देशभक्ति गीत सुना के। अगला कार्यक्रम अछि देशभक्ति गीत मैथिली में।

0: ता श्रोतागण केहन लागल अपने सबके ओजपूर्ण गीत आप अपन सबके जे अपन सबके कम्युनिटी के यात्रा आज से तस शुरू है या पिछला साल 28 जून 2025 में हम सब एक सुंदर कार्यक्रम कलों जकर नाम रहे मिथिला महोत्सव और तस आई कार्यक्रम थॉट के शुरू भेल थॉट शुरू भेल जे कम से कम एत एक कम्युनिटी बनेबाक चाहिए अपना सबके मिथिला से दूर ऑस्ट्रेलिया में अपन मिथिला हेबाक चाहिए और अई प्रयास में बहुत सारा लोग जुड़ल अपना सबसे किछ लोग जो जुड़ल वो तो बैसल सबसे पहने हम आग्रह करबें श्री यतेंद्र गुप्ता जी के अपना विषय में दुलाइन बाजा के श्री यतेंद्र गुप्ता जी
1: प्रणाम श्रोताओ मैं मिथिला सीखने वाला हूँ तो आप मेरे को कतार में खड़ा हुआ पाएंगे ठीक है ना तो मैं आज नहीं बोल पा रहा हूँ लेकिन कल जरूर बोलूँगा कल की परिभाषा क्या हो सकती है वो आपको मालूम है अब आप लोग कितने ऐसे प्रोग्राम करते हैं शशि जी वो मैं देखना चाहता हूँ बट मुझे इतना गर्व हो रहा है कि ये ऐसी शुरुआत है उसका मैं हिस्सा बना हूँ मेरे लिए बड़ी खुशी की बात ये भी होगी कि ऐसी भाषाओं के हम एक संकलन करते हैं सब लोग सीखें और मेरा मानना है कि अगर हम अपने दादा परदादा से संपर्क रखना चाहते हैं तो भाषा के अलावा और कुछ साधन नहीं है आँखों से कब तक बातें करेंगे जी ना तो मेरा परिचय है कि मैं अकाउंटेंट हूँ यहाँ पे और वैसे दर्पण हिंदी रेडियो प्रोग्राम का मैं एक साथी हूँ अभी 9 से 11 बजे तक भी मैं रहूँगा और अकाउंटेंट होने के नाते अकाउंटेंट की भाषा भी करता हूँ टैक्स की भाषा भी करता हूँ ये मेरा मानना है कि ये एक ऐसी चीज़ है कि हर एक को प्रभावित करती है शशि जी अगर आप इजाज़त देते हैं तो एक छोटे सा मैं संस्मरण अपना बताना चाहता हूँ मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था तो भारत में चार्टर्ड अकाउंटेंसी इसलिए करी थी कि शादी हो जाए वो शादी हो गई यहाँ पे आए तो मतलब ये था ना कि नॉट दैट सीरियस टाइप ऑफ थिंग शादी सीरियस है लेकिन फिर भी ओके तो करीब 1.5 महीने पहले शशि जी एक मुझे कम्प्लीमेंट मिला और मैं शायद कभी सोचा नहीं था कि इतना बड़ा कम्प्लीमेंट मुझे लाइफ में मिलेगा और ये था कि एक हमारे नए क्लाइंट हैं तो वो होटलियर हैं वो भी भारत से ही हैं तो उन्होंने कहा कि मैंने जो है ना स्लीपिंग की मशीन लेना बंद कर दिया है वो सोते हुए स्लीपिंग की मशीन लगा देते हैं तो मैंने कहा ग्रेट वो तो बहुत अच्छी बात है आप ऐसा कर रहे हैं थोड़े पॉज के बाद में वो कहते हैं कि ये आपकी वजह से बंद हुई है तो मैंने उनको बोला कि मैं अकाउंटेंट हूँ मैं डॉक्टर नहीं हूँ मुझे पक्का मालूम है कि मैं अकाउंटेंट हूँ तो कहने लगे कि नहीं आपने जब से हमारा काम संभाला है मेरा स्लीपिंग मशीन बंद हो गई ऐसा कम्प्लीमेंट होना तो अकाउंटेंट का भी एक रोल है मैं ये जस्टिफाई करना चाहता हूँ और जी
0: हमारे प्रोफेशनल लाइफ में तो रोल है ही और पर्सनल लाइफ में भी आपने जिस तरह से लोगों को लोगों की सहायता की है बहुत ही सराहनीय है
1: नहीं तो मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि हम जो आर्थिक होता है वो हमारी बहुत उसको करता है तो हो सकता है कि हम मैथिली भाषा में भी हम इस चीज़ को लेके आए कि हम अब अकाउंट तो सामाजिक विषय पे भी रहेगा शायद आप लोगों का प्रोग्राम और साथ साथ में ये सब बातें दुनियादारी की बातें जिसको आप कह सकते हो वो भी बहुत ज़रूरी हो जाती हैं तो ये मेरा छोटा सा परिचय रहा है जी खुशबू जी आपका नाम खुशबू ही है बताइए अपने बारे में
2: नमस्कार मेरा नाम खुशबू ही है और मेरा पूरा नाम खुशबू चौधरी झा है
1: जी
2: तो और मुझे बैकग्राउंड मेरा एक्चुअली फैशन डिज़ाइनिंग है मैंने एमएससी की हुई है अपैरल टेक्नोलॉजी में बट जैसे हम सबको पता है ऑस्ट्रेलिया आके हमारा सबसे पहला जो है प्रोफाइल चेंज हो जाता है
1: जी, जी.
2: तो और अभी मैं एक मम हूँ मेरी बेटी है छोटी तो मेरा पूरा टाइम जो है अभी उसके पीछे ही जाता है एंड आई स्ट्रांगली फील कि होम मेकर का काम सबसे बड़ा होता है
1: जी.
2: मैंने पूरी ज़िंदगी अपनी मम्मा को करते हुए देखा है तो आगा जे छे हम मैथिली में बाजब बिकॉज मैथिली शो छे और हमरा बिसरा गेल छले तो मिथिला जे छे हम बचपन से देखने छिए और मिथिला के हम हमरा लेल मिथिला हम जखन छोट छलिए बच्चा छलिए त हमरा लेल मिथिला पूरा बिहार छलै हमरा त कनी बॉर्डर्स पता नै चलै छलै जे आब पता चलै छै त हमरा होइ छलै जे कियाकि हमर दायरा जे छलै सिर्फ कलकत्ता टू दरभंगा छलै हमर ब्राउन बॉटम कलकत्ता के हम कलकत्ता में रहै छलिए और हम लोग मतलब हम सब जाई छलिए गर्मी छुट्टी में गाम और बाबा दादाजी हमरा सब संगे रहैत रहथिन त मिथिला कहियो हटलै नै घर से बस हम सब कनी साइड को देने छलिए मैथिली के बट थैंक्स टू माय हस्बैंड आई डोंट नो
1: हस्बैंड को क्या बोलते हैं मैथिली में
2: बोर तो क्योंकि ई सब शुरू से बाहर रहलखिन लेकिन हम देखलिए हिनका फैमिली में हमरा फैमिली से ज्यादा मैथिली के लोग मतलब लैंग्वेज हैबिट फूड हैबिट लैंग्वेज सब के हिनका सबके ज्यादा छलन तो हमरा आइयो याद है हमर बाबा अभी दुनिया में नहीं छै लेकिन हमर बाबा कहने रहथिन जे अत तक है ना बेटा अत छोड़ कर जो बहुत नीक छथिन आर ओत के अडाप्ट कर तो हम वही चीज के आगे लोग चल रहा छी धन्यवाद
0: बहुत बहुत बढ़िया खुशबू जी और अगला जे गेस्ट छै उनका नाम छै संध्या झा संध्या जी की करै छी अपने की परिचय भेल आर एतय केना पहुँचलिए
3: प्रणाम सब गोटा के हमर नाम छी संध्या झा आर हम बेसिकली रिसर्चर छी लाइफ साइंसेज में आर मेन ई छै कि हम मिथिला से केना जुड़लिए तऽ हमर रूट्स जे छै ओ मिथिला के दरभंगा रीजन से भेलै मेनली बट पूरा बॉटम सब किछु कहि लिए तऽ ओ नॉर्थ इंडिया में भेलै तऽ एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज छलै कि केना कनेक्टेड रहि सकै छियै हमसब मिथिलासँ तऽ एहिमे हम कहबै कि हमर पेरेंट्सके बहुत बड़का रोल छै कि ओ ई कनेक्टिविटीके बरकरार रखलखिन चाहे हमसब अपन पूरा स्टडीज करियर सब किछु नॉर्थ इंडियामे बनेलिए बट टाइम टू टाइम चाहे ओ गर्मी छुट्टीमे या दुर्गा पूजामे गाँवमे विजिट करनाए होइ तऽ ओ सब किछु रखलखिन ऑन कि हमर सबके अपन रूटसँ हमसब अलग नहि भऽ जाइए एहिला कि जखन अहाँ एक नया जगहपर नया कल्चरमे बड़का होइ छिए तऽ ओहि कल्चरके प्रभाव अहाँपर बेसी पड़ैए कि अहाँ सीखै छिए कि अच्छा एना होइ छै तऽ अहाँ अडेप्ट ओवला कल्चर जल्दी कऽ लै छिए जाहिमे अहाँ जाहि एनवायरमेंटमे अहाँ ग्रो करै छिए बेसिकली साइंसमे हमसब वएह कहै छिए कि एनवायरमेंट प्लेज अ वेरी इम्पोर्टेंट रोल इन ग्रोथ ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म राइट तऽ ओ इंसानोपर लागू होइ छै बट ओ एनवायरमेंटमे अपन रूट जहाँसँ अहाँ आयल छिए ओकरा केना लॉन्गेटिविटी ओकर राखैके छै ओ अहाँके पहिलाके जेनरेशन्स ज्यादा ओहिमे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करथिन आर ओहे सेम चीज आइ हमसब जे ई चैनल स्टार्ट केलियै तऽ ओकर मेन एजेंडा इएह छै कि जे बच्चा सब एतऽ पैदा भेल छै ओकरा सबके केना अपन मैथिलके रूटसँ कनेक्ट राखैके छै तऽ ओकर जिम्मेदारी हम सब जनरेशन पर छै नहीं तो ये जनरेशन अल्फा बीटा जे छै ओ अपन दादा दादी के जनरेशन से एकदमे कट जेथिन अगर हम सब ई ब्रिज नहीं बनबै तऽ
0: बहुत सुंदर विचार अहाँ के संध्या जी यार हमर सब के जे कि छोट मोट प्रयास हम सब कर रहल छी आगा आवा वाला जनरेशन के लेल किछु सार्थक भ सके या कामना अछि तेसर गेस्ट नवनीत झा जी अहाँके बहुत बहुत स्वागत अछि अपना विषयमे किछु कहियौ केना पहुँचलियै कतऽसँ छी की बैकग्राउंड अछि
4: नमस्कार सब गोटाके प्रणाम हमर नाम भेल नवनीत झा हमर ओना तऽ जन्म आओर बॉर्न ब्रॉट अप स्कूलिंग सब भेल हन सिलीगुड़ी पश्चिम बंगालमे लेकिन हमर हमसब मिथिला रीजनसँ बिलोंग करै छी मिथिलाके दरभंगामे एक बहुत पावन धरती छै जहाँ कुशेश्वर स्थान जहाँ शिवजीके बहुत एक महान एक टेम्पल छै एक इतिहास छै ओतऽसँ हमर दादा दादी नाना नानी सब दरभंगा जिलासँ बिलोंग करै छथिन तऽ चूँकि हमर पप्पा स्कूलमे हाई स्कूलमे टीचर रहथिन तऽ ओ वेस्ट बंगाल आबि गेल रहथिन आओर हुनकर यहाँपर जॉब भए गेल रहै तऽ सेटल हमसब भए गेलियै यहाँपर लेकिन मर पेरेंट्स के धन्यवाद जो वो सब कभी भी मिथिला से निकल के लेकिन मिथिला से तो निकल गए लेकिन अपन दिल से मिथिला के नहीं निकाल लेकिन कभी तो घर में हम सब मिथिला भाषा में ही बात करे छे मोस्टली मम्मी पापा से या जे भी हमर सबके रिलेटिव छे और बचपन से हमर सबके रहे जे गर्मी छुट्टी स्कूल है तो हम सब जाइए दादी घर नानी घर सब दरभंगा में रहिए एक महीना रहिए वहाँ के कल्चर वहाँ पे खाना पीना वहाँ का एक अलग एनवायरमेंट जे मिथिला के जे एकदम देसी जे फील है जे वो हमर सबको वहीं पे आवे लेकिन जाकि किया कि जुलर रहिए सबसे तो हमर सबके अंदर मिथिला हमेशा रहले और अभी भी छे और आशा करी छे आगे भी रहते और बाकी आगे जनरेशन कम से पास ऑन करे के पूरा कोशिश करी छे तो वह छे पप्पा हमर सबके कहते रहतीन जे जे वृक्ष अपन जड़ से अलग भ जाए छे वो सूख जाए छे एक दिन तक अहाँ सब कोशिश करूँ हमेशा अपन जड़ से जुड़ल रहूँ अपन रूट से कनेक्टेड रहूँ भले यहाँ धरती के कोनो कोना पर रहूँ चाहे देश विदेश हर जगह जहाँ मैथिल्स छे एक ऑर्गेनाइजेशन छे उनकर सबके जुड़ल रहे छथिन और सोशल मीडिया के ज़माना में सब सबसे जुड़े छथिन पता चले छे कहाँ की भै रहल छे तो हमर हम तो फिर वहाँ से सिडनी आबि गेलहुँ हम आई टी में जॉब करे छी लेकिन सिडनी आबे के बाद कनी हमरा गैप फील भेले जी यहाँ पे शायद ओहि तरह से नए छे लेकिन लास्ट दू साल में थैंक्स टू शिशिर जी और भी किछ मिथिला के सदस्य छथिन जिस अभी ऑर्गेनाइजेशन के एक स्पीड दलखिन और एक ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश भेले एंड पिछला साल बहुत इवेंट्स भेले जकर बारे में आगे चर्चा हेते और इस साल भी काफ़ी किछ प्लान छे तो ई ग्रुप बहुत ग्रो कह रहल छे और यहाँ पे बहुत मैथिल रहथिन जे पता नहीं रहे एक दूसरा के जते मैथिल छे से सब जुड़ रहल छथिन और ग्रुप पढ़ रहल छे तो बहुत खुशी भए रहल छे जे हम सब कत्तौ एते दूर रह के भी मिथिला से एते कनेक्टेड छी तो हम ज़्यादा समय नहीं लेब
0: बहुत बढ़िया नवनीत जी ये बात सटीक छे जे जे अपन रूट से जुड़ल रहे छे ओ गाछ पर रहे छे नहीं तो पत्ता जे छे से गाछ पर से खसि पड़े छे तो हम हमरा सब के लेल ई अवश्यम्भावी अछि जे अपन रूट से जुड़ल रहे अपन मिथिला से जुड़ल रहे अपन भाषा से जुड़ल रहे कला संस्कृति से जुड़ल रहे और एकटा छोट आह्वान अपने सब गोटे के लेल जे आवा वाला समय में हम सब एठम एकटा छोट मिथिला के बनाबी ऐसा पहिने कि आगा बढ़ी एक बेर फेर हम अहाँ के अपन नंबर दे छी क्या कि हमरा पता है जे देश विदेश से बहुत लोग जुड़ल छथि और संपर्क करे चाहे छथि हमर नंबर है +61 426 399 461 और वेबसाइट के नाम छे www.mithilaculturalsociety.au अपने सब कमेंट दियो आए पर आगा बढ़ो
1: सुशील जी हमारे दर्पण रेडियो के भी श्रोता सुन रहे हैं तो हमारे प्रदीप जी इस समय अमेरिका में हैं वो सुन रहे हैं उनका प्रश्न आया है कि ये भाषा भौगोलिक रूप से कितने एरिया में बोली जाती है
0: बहुत ही अच्छा प्रश्न है प्रदीप जी का प्रदीप जी बहुत बहुत धन्यवाद तो मिथिला एक एक मिथिला की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वह मात्र एक भारत एक देश तक सीमित नहीं है मिथिला भारत में और नेपाल में दोनों रूप से समान दोनों देशों में समान रूप से बोली जाती है जैसे कि मिथिला में भारत में अगर हम बात करें तो दरभंगा मधुबनी सीतामढ़ी शिवहर मुजफ्फरपुर सुपौल सहरसा मधेपुरा ये सारी जगहें जो है यहाँ पर मैथिली बोली जाती है और उसी तरह अगर हम दूसरे तरफ चले जाएं नेपाल में चले जाएं तो धनुषा महोत्तरी सिरहा सप्तरी सरलाही सुनसरी इस तरह के जो जिला हैं जो बिहार से सटे हुए हैं वहाँ पर ये भाषा बोली जाती है एक समय था जब ये पूरा जो भौगोलिक क्षेत्र है यह एक ही हुआ करता था परंतु कालांतर में जब जैसे जैसे लोग समझते गए उन्होंने अपना एक बॉर्डर बना लिया और भाषा एक ही रह गई लोग बदल गए तो ये काफ़ी रिच भाषा है काफ़ी प्रबुद्ध भाषा है इसमें हमारे अपने स्क्रिप्ट हैं अपना लिपि है जिसको हम तिरुत लिपि बोलते हैं इसमें बहुत सारे महान कवि हुए हैं विद्यापति जैसे और हाल के समय में अगर हम बात करें तो बहुत सारे कवि हुए हैं बहुत सारे लेखक हुए हैं जिनके जिनका भाषा पर समान रूप से अधिकार रहा है कला संस्कृति मिथिला की अभी भी महान है अभी भी संपूर्ण विश्व में मधुबनी पेंटिंग अपने ने अपना झंडा गाड़ रखा है मधुबनी पेंटिंग के अलावा और भी अलग अलग पेंटिंग्स के और हाल के समय में अगर हम बात करें तो बहुत सारे कवि हुए हैं बहुत सारे लेखक हुए हैं जिनके जिनका भाषा पर समान रूप से अधिकार रहा है कला संस्कृति मिथिला की अभी भी महान है अभी भी संपूर्ण विश्व में

पहन शैली है, वादन शैली है, हर प्रकार की चीज़ें इस भौगोलिक क्षेत्र में, इस भौगोलिक क्षेत्र को महान बनाती है। इन सारे चीज़ों पर हम धीरे धीरे करके बातें करेंगे, लेकिन अभी समय है अगला गाना सुनने का। आइए एक बहुत ही कर्णप्रिय गाना हम सुनते हैं जो विद्यापति द्वारा लिखा हुआ है। आइए।

0: तो श्रोतागण अपने सबके गाना केहन लगले और हमरा अपन गलती के एहसास भेल जे ई जे गीत छै से विद्यापति के शायद नहि छै क्याकि हमर सहयोगी जे तो बैसल छथि से हमरा करेक्ट केले था तो ओहिलेल क्षमा प्रार्थी छी। आगा बढ़ायल जाए हमरा संगे नवनीत जी छथि। नवनीत जी तऽ पछिला साल हमरा पता अछि जे अपने सब एकटा मिथिला महोत्सव नाम के प्रोग्राम केने रहियै सिडनी मे मिथिला सँ दूर, की अनुभव रहै, केहन रहलै?
1: तो पिछला साल जे हम सब मिथिला महोत्सव केलहुँ, पहला मिथिला महोत्सव रहे और बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया अनुभव रहले, बहुत यादगार क्षण रहे। बच्चा, युवा, बुजुर्ग सब गोटे जुड़लखिन जैमे मिथिला के संस्कृति, मिथिला के कला परम्परा के ऊपर प्लेज रहे, गा संगीत रहे, मिथिला पेंटिंग के एग्जीबिशन रहे, मिथिला भोजन रहे। तो मिथिला कल्चर से जुड़ल जत्ते चीज अहाँ सोच सके छे, हर चीज के किछ न किछ तरह से ओहिमे प्रेजेंटेशन कैल गेल रहे। खास कर के नया पीढ़ी सब के मंच पे भाग लेत, उनका सब पार्टिसिपेट कल के उनका सब के भाग लेत देख हमरा सब के बहुत सुखद अनुभव भेले और अई आयोजन से हमरा सब के काफ़ी सीख भी भेटले और हम सब के

0: प्रूव कह सके छे पे सब समुदाय एकजुट भेलखिन और पिछला जे मिथिला महोत्सव रे एक पाथ ब्रेकिंग इवेंट भेल हमरा सब लग जैमे सबको पता चले जाए अच्छा मिथिला कम्युनिटी भी क्या छै और ग्रो कह रहल छै और विदेश में खास करके ऑस्ट्रेलिया में एहि तरह से नहीं पहले भेल रहती भाषा संस्कृति और हमर सबके परम्परा के जीवित राखे के एक अभूतपूर्व प्रयास शुरू भेल हन जे एहि साल एक लेवल ऊपर जाके हम सब और ग्रैंड में करे के सोच रहल छियै तऽ पिछला साल तऽ बड़ जबरदस्त हम सबके लिए और खूब बढ़िया भेलै
1: वाह अहाँके प्रशंसा अहाँके उत्तरसँ प्रसन्न भऽ कऽ रेखा राजवंशी जी प्रश्न कऽ रहल छथि जे वहाँका स्पेशल खाना क्या है तऽ की रहै पछिला बेर खानामे
0: तऽ पछिला बेर खानामे जे रहै सबसँ इम्पोर्टेन्ट जे मिथिलाके छै ओ तऽ छै बड़ी बड़ीके बड़ी भात रहै आओर तरुआ सब रहै मिथिलाके मखानके एक डिश रहै मखान तऽ मिथिलाके एक पहचान छै आओर हम अपन बाकी सहयोगी सब भी कहबै जे ओ सब किछु बता
2: भाटा दौड़ी रहै भाटा यानी बैंगन आर मिठाई रहै रसगुल्ला आर जे लास्ट होइ छै मिथिलाके फूड जिनका पकड़ा मतलब फूड कम्प्लीट नहि होइ छै मतलब मिथिला प्लेट होइ छै दही चीनी तऽ दही चीनी सेहो रहै आर लास्टमे जते अतिथि आयल रहथिन हुनका सबके हमसब सुपारी आर लौंग इलायची दऽ कऽ विदा केने रहियनि जे मिथिलाके कल्चर छै जे अगर जेना अपना सबके पता हैत केओ अगर अपना सब ओतऽ आबै छथिन तऽ दादी माँके देखने छियै जे ओ एकटा प्लेटमे लौंग सुपारी इलायची राखैत रहथिन आर जे केओ अबैत रहथिन खानाके बाद हुनका ऑफर कयल जाइत रहै तऽ छोटा सा प्रयास रहै लास्ट टाइम आर एक्चुअली जेना नवनीत जी कहलखिन कि मतलब बहुत बहुत जबरदस्त रहै कियाकि अपन कल्चरके लऽ कऽ आर हमरा बुझाय कोनो कल्चर जे छै ने सबसँ ज्यादा लैंग्वेज आर फूड ई मेजर चीज छै कियाकि एखनो जेनाकि आब बिसरा रहल छै हमरा सबके लेकिन बचपनमे जे खाना खेने छियै आओर ओ जे ऑथेंटिक खाना लाइक विदाउट मसाला जेकि मतलब बहुत सिम्पल मसाला जे कियाकि पहिले अगर देखल जाए तऽ किनको घरमे एतेक सारा मसाला यूज नहि होइ जतेक आइ काल्हि मार्केटमे भेटै छै आओर हमसब यूज करै छियै तऽ
1: बहुत बढ़िआँ आओर जहाँ तक हमरा याद आबि रहल अछि पछिला बेर खजुरी पिरकिया सेहो बनेने रहथि आओर खजुरी पिरकिया निमकीके सेहो प्रावधान रहै अपन सबके जे गेस्ट रहथिन तिनका लेल तऽ खाना काफ़ी बढ़िआँ रहै धन्यवाद रेखा जी अहाँके प्रश्नके लेल आओर आगाँ बढ़ऽसँ पहिने हम संध्या जीसँ एकटा प्रश्न अछि जे संध्या जी कियाकि अहाँ एतऽ आयल छी नया नया आओर अहाँके बुझैमे अहाँके जे बातचीत छलै जाहिसँ ई पता चलल जे अहाँ अगिला जेनरेशनके बारेमे कतेक नीक सोच रखै छी तऽ की बुझामे आबि रहल अछि जे एहि तरहके कम्युनिटी इवेंट कोन तरहसँ अगिला जेनरेशनके हेल्प कऽ सकै छै
3: मेनली जे बच्चा सब एतऽ पैदा भेल छै ओकरा सब लए मिथिलासँ कनेक्ट करनाइ बहुत जरूरी छै तऽ ओहिमे इवेंट आर लैंग्वेज ई दू चीज छै जे सबसँ ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करतै आर अपन मिथिलामे बहुत ईयरके शुरू होवऽसँ लऽ कऽ ईयरके एंड तक कोनो ने कोनो इवेंट रहै छै जकर कोनो ने कोनो वैल्यू छै जेना जनवरीमे अपना सबके जेना सङ्क्रान्तिके टाइमपर आबै छै जूड़ शीतल तऽ जूड़ शीतलमे अहाँ बच्चा सबके जखन चूड़ा दही आर तिलके महत्व बतेबै तऽ बच्चा सब अपने हुनका लागतै कि ई की छै ई तऽ नया कोनो डिश अयलै यार एकर मतलब
1: तिला संक्रांति होइ छै तिला संक्रांति होइ छै साल के शुरुआत में
3: सॉरी हम कनी ओ कह
1: दिए के बाद होवे
3: छै न्यू ईयर जे बेसिकली मिथिला के जे न्यू ईयर होइ छै ओ होइ छै जूट शीतल आर ओइसे पहिले जे जनवरी वाला जे होइ छै ओ तिला संक्रांति होइ छै तऽ हम माफी चाहब कि हम कनी मिस मैच कह दिए तऽ ओकरा बाद फेर हमरा सबमे सावन के लऽ कऽ एगो त्यौहार होइ छै जकरा कहै छै मधुश्रावणी तऽ ओहिमे प्रकृतिसँ केना जोड़ै छै ओहिमे बच्चा सबके हमसब कऽ सकै छियै पार्टिसिपेशन बढ़ा सकै छियै आर ईयर एंडमे एक बहुत बढ़िआँ त्यौहार होइ छै जकरा कहै छै सामा चकेवा तऽ ई सब त्यौहार सबमे जखन बच्चा सब अपने आबि कऽ पार्टिसिपेट करथिन मतलब हमसब बच्चा सबके ओ मंच देबै जाहिसँ ओ सब एहिमे पार्टिसिपेशन बढ़ेथिन तऽ ऑफकोर्स ओ जे ब्रिज छै ओ हमसब बढ़िआँसँ
1: एकदम बिल्कुल अहाँके विचारसँ सहमत छी आर तैँ एकटा जे किछु अपने सबके ई कम्युनिटी छोट मोट प्रयास कऽ रहल छै एता के बच्चा सब के कम से कम भाषा सिखावा के लेल एता के कला सिखावा अपन मिथिला के कला सिखावा के लेल और ओई में कम्युनिटी इवेंट सब जे छे से बहुत योगदान द सके छे अही प्रयास में एकटा आर जे छे आवा वाला समय में मिथिला महोत्सव ऐ साल ऑर्गेनाइज भ रहल अछि और ओई में दुर्गा पूजा संगे संगे सेहो हेतै ओई मिथिला महोत्सव में जे छे से पछिला बेरसँ अहाँ सबके कनिक आर बढ़िया चीज देखल लेल भेटत सुनल लेल भेटत खाय लेल भेटत तऽ अपने सब अभियो आई पर जे अइ के विषय में जतेक जानकारी चाही अपने के ये अपन सबके वेबसाइट www.mithilacultural society.au पर अवेलेबल अछि जानकारी के लेल अहाँ हमरा फोन सेहो कऽ सकै छी +61 426 399 46 426 तऽ आब जना संध्या जी कहलखिन मधुश्रावणी मधुश्रावणी कैल छलैए तऽ किया नहि एकटा मधुश्रावणीके ऊपरमे बहुत बढ़िआँ गाना सुनल जाए ओहिके बाद जे छै से कार्यक्रमके आगाँ बढ़ायब

0: श्रोतागण केहन लागल अपने सबके गाना ई कोरस सॉन्ग बैस के जे अपन सबके घर के महिला सब छथिन स्त्रीगण सब छथिन बैस के एक संगे ई गाना गबै छथिन ओकर बेहतरीन उदाहरण छै और अपने सब एकरा अवश्य आनंद लेने हैब तकर आशा अछि जेना बात भऽ रहल छलैए पछिला सेक्शन में कि मिथिला महोत्सव की लऽ कऽ अयलै कम्युनिटी इवेंट सँ की भऽ सकै छै तऽ सबसँ बड़का चीज छै भाषा आर भाषा के कारण जे छै से कोनो कम्युनिटी या कोनो सिविलाइजेशन जिंदा रहै छै सबसँ अगर सिविलाइजेशन के समाप्त करय के छै तऽ सबसँ पहिने भाषा समाप्त कऽ दियौ सिविलाइजेशन समाप्त भऽ जायत तऽ मिथिलाक्षर अपन सबके लिपि जे छै से ऑलमोस्ट समाप्त भऽ चुकल छलैए जाहिमे किछु नाम भारतमे जे काज कऽ रहल छथि हुनका सबके धन्यवाद जे मिथिलाक्षरके रिवाइव केलथि ओहि क्रममे एकटा बहुत छोट प्रयास छै मिथिला उत्कर्षके जे भाषाके अपने सब तक पहुँचा रहल अछि नहि मात्र मिथिलाक्षर बल्कि मिथिलासँ सम्बन्धित जतेक कला छै आर्ट छै कल्चर छै हर चीज अपनेके पञ्चाङ्ग छै हर चीज अपनेके भेटत मिथिला उत्कर्षमे अपने सब जइयौ सर्च करियौ www.mithilautkarsh.com अपने सब ई भारतमे किनको अथी छनि जे मिथिलाके एक जगह पर लाबऽ चाहै छथि मिथिलाके हर प्रयास हर चीजके तऽ ई बहुत बढ़िआँ प्रयास छै हुनका साधुवाद ओहि लेल आब समय अछि मात्र 10 मिनट बाँचल अछि तऽ अपना सबके कनिक जल्दी जल्दी करऽ पड़त तऽ आबऽवला समयमे हमसब 2026 जे किछु कऽ रहल छी ओहिके विषयमे खुशबू जीसँ हम पुछबनि जे की होवला छै से खुशबू जी
1: तऽ एहि बेर मिथिला महोत्सव जे छै से दुर्गा पूजा सङ्गे भऽ रहल छै माँ आबि रहल छथिन भगवती तऽ एहिमे बच्चासभ लेल काफ़ी किछु छै आर जखन बच्चासभके किछु रहै छै तऽ हमरा लेल काफ़ी मतलब इनोवेटिव रहैए तऽ बच्चासभवला जे छै छोट छोट जेना स्किट भऽ रहल छै म्यूजिकल स्किट छै डांस छै फूड वगैरहके तऽ स्टॉल वगैरह जे सब रहतै से सब रहबे करतै तऽ विजन ई छै जे बच्चा सबके छोट छोट स्किटके माध्यमसँ आर्यके माध्यमसँ इंगेज कयल जाय ताकि ओ सब जे छथिन ने कनिक हुनका सबके पता चलनि कियाकि होइ की छै जे रामायण महाभारत किछो हमसब मतलब देख कऽ ओ सब ज्यादा ये समझै छथिन तऽ अगर ओहि चीज के अपने प्ले करथिन तऽ
0: बहुत नीक प्रयास अछि जे बच्चा सबके अहाँ एंगेज कऽ रहल छी अपने सब
1: धन्यवाद छै
0: बहुत नीक प्रयास अछि अपने के आब नवनीत जी आर की भऽ रहल छै बच्चा सबके कार्यक्रम के अलावा आर की कऽ रहल छी अपने सब
2: तऽ जेना खुशी जी कहलखिन काफ़ी सारा इवेंट्स प्लान छै माँ भगवती के पूजा अर्चना छै ई सब छै लेकिन बच्चा सबके इवेंट के अलावा जे सबसे एक हाईलाइट इवेंट अभी हम सब कह रहल छी ओ छै कालिदास और विद्योत्मा के एक प्ले छै ऊपर बेस जे बहुत ही बहुत बढ़िया रिहर्सल चलि रहल छै ओकर और पिछला साल हम सब विद्यापति के लेके केने रहिए जे काफ़ी लोग के पसंद अलै काफ़ी भावुक प्ले रहै हुनकर और महादेव के जे ओ एक स्टोरी छै संवाद छै हुनका ऊपर कयल रहै और एबेर कालिदास विद्योत्तमा के ऊपर कह रहल छै हम सब एकर अलावा जेना कि फोक सॉन्ग और झिझिया के कहलखिन ओ सब छै फिर एक पेंटिंग के भी छै और किछ किछ पार्टिसिपेशन एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आबि रहल छै एक मिथिला कल्चरल फैशन शो भए रहल छै एक डांडिया इवेंट छै जे कि हमर सबके दुर्गा पूजा के पार्ट छै और हम
0: बहुत बहुत धन्यवाद नवनीत जी संध्या जी आर किछु कहियौ एहिके विषयमे आर की हम सब किछु की कऽ रहल छी
3: मेनली जे अपन सबके मिथिला महोत्सव छै एहि साल ओ माँ भगवती के साथ भऽ रहल छै मतलब माँ भगवती बेसिकली आबै छथिन हमरा सबके एहि दिशामे लीड करय लए तऽ ई तीन दिन के जे दुर्गा पूजा के इवेंट अपना सबके छै तऽ ओहिमे पहिला दिन तऽ अपना सब माँ के अर्चना पूजा करबै आर माँ के वेलकम करबै सिडनी के धरती पर आर ओकरा बाद अपन मिथिला महोत्सव के सेकंड ईयर मनायल जेते आर ओकर जे जे इवेंट छले ओ हमर दुनू साथी गण अहाँ के बतेबे केलखिन हैं। फिर तेसर चीज जे हम सब करबे ओ छे माता की चौकी आर एकरा साथ हमर अपना सबके पहला दिन के इवेंट लिस्ट ई रहते। सेकंड डे पर हम सब आयोजित के लिए या डांडिया नाइट आर अहाँ सब वेलकम छे ओमे आवल है अहाँ सब रजिस्टर करिए हमर सबके साइट पर।
0: नहीं बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न आबि सकैए डांडिया जे छै से मिथिलासँ नहि छै तऽ एहिपर एहिके विषयमे की कहऽ चाहबै जे डांडिया तऽ मिथिलासँ नहि छै तऽ
1: मिथिला कतौ सीमित नहि छै।
0: वाह बहुत
3: एकर सबसे बड़का एग्जाम्पल छै कि मिथिला एखन सिडनी में अमेरिका में पूरे विदेश में हर जगह मिथिला गन छथिन तऽ अहाँ मिथिला के सीमित नहि कऽ सकै छियै।
1: मिथिला कल्चर छै अतिथि देवो भव तऽ मैथिल हमेशा अतिथि देख कऽ खुश होइ छै तऽ
0: एकदम सटीक बात कहलियै अपने जे मिथिला कोनो चीज कोनो एकटा जगह सँ सीमित नहि छै। मिथिला एकटा कला छै जे सर्वत्र छै यत्र तत्र सर्वत्र सब सम्पूर्ण विश्वमे व्याप्त छै आओर जेना पहिने छलैए ओहि चीजके फेरसँ पुनर्जागरण करऽके छै। तऽ आबयवला समयमे मिथिला कल्चरल सोसाइटी ऑस्ट्रेलिया एहि तरहके बहुत सारा जे छै कार्यक्रम करैत रहतै। अहू साल बहुत किछु प्रोग्राम भेलैए। मिथिला महोत्सव 2026 एकटा अपना आपमे एकटा लैंडमार्क प्रोग्राम छै जे एतयके ऑस्ट्रेलियामे जतेक प्रयास ई छै जे हर नम्हर ऑर्गेनाइजेशनके जोड़ैके छै हर लोकके पता हेबाक चाही जे एतय मिथिला ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करै छै। प्रत्येक व्यक्तिके ई पता होइ जे मिथिला की छै मिथिलाके आर्ट कल्चर की छै भाषा की छै एहि दिशामे कार्य कऽ रहल छी। तऽ अपने सब अबियौ जुड़ियौ आओर वेबसाइट पर रजिस्टर करियौ। वेबसाइट के नाम तऽ अखन तक अपने सबके याद भइए गेल होयत नाम छै www.mithilaculturalsociety.au आओर नंबर यदि अपने सब संपर्क करय चाहे छी तऽ नंबर लिख लिया +61 0426 399 461। तऽ अब अपने सबसँ ई आग्रह अछि जे अहाँ सबके एहिपर अधिकसँ अधिक रजिस्ट्रेशन हेबाक चाही। एखन हम देखलियै रेखा जी कहि रहल छथि खुशी जी जे निमंत्रण के जे छै से प्रतीक्षा रहत तऽ अहाँके हुनका बजाबऽ पड़त।
1: जरूर रेखा जी प्लीज आउ पूरा फैमिली संगे आउ और हम लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो हम तो
4: मेरा प्रश्न है कि डंडिया जो है ना आपका ये गुजरात में भी होता है?
1: हाँ गुजरात का ही है डांडिया।
4: आप गुजरात वाला तो आपका मधुबनी वाला नहीं है?
1: नहीं नहीं।
4: अच्छा अच्छा फिर ठीक है।
3: हम मधुबनी गाने पर
1: दुर्गा एक्चुअली मुझे नहीं लगता दुर्गा माँ किसी बॉर्डर की ये है।
4: नहीं नहीं नहीं मैं समझा कि डंडी आपका उधर भी हो गया इधर भी हो गया।
3: और हम आपको मधुबनी गानों पर मिथिला के गानों पर डांडिया करके
2: और फ्यूजन होगा। और डांडिया हो या माता की चौकी हो या और भी कुछ हमारा ये भी एक टारगेट है कि सिर्फ जो मिथिला के बाहर के है वो भी इसमें जुड़े वो भी आए और उनको भी एक कनेक्शन फील हो जिससे वो भी इवेंट को देख के मिथिला के बारे में जानेंगे और उनको ऐसा लगेगा कि हमारे लिए भी कुछ है।
4: वही वही वही तो अगर मिथिला ही वाले को मिथिला सिखाओगे तो क्या फायदा होगा?
2: हाँ तो बाहर के लोगों को जोड़ने का एक
4: तो अगर हम
1: यतिन जी एक ये है कि मिथिला में अगर कभी मौका मिले ना तो आप बिहार में मिथिला रीजन जरूर जाइए और स्पेशली जब उनका कुछ भोज या उनका जनाऊ ये सब रहता है मेहमान बनके तो हमारी ये सच में इच्छा है कि हम जैसे वहाँ गेस्ट को बिठा के।
4: चलिए मैं अभी आपको अनाउंस करता हूँ कि अभी दिसंबर के पहले ही या दिसंबर में वहाँ का प्रोग्राम बना रहे। चलिए हो गया
1: जरूर जरूर
4: अभी रेडियो पे अनाउंस हो गया।
1: तो ये जो है ना आपको फील होगा कि गेस्ट जो है ना आपको लगेगा कि भगवान समझ लिया मुझे
3: श्री राम को हमने मेहमान का दर्जा दिया है।
4: तो अब प्रोग्राम तो जैसे कि होता है हमेशा समय हमेशा ही कम पड़ता है तो आज का जो हमारा ऐतिहासिक प्रोग्राम था मैथिली का वो समाप्त होने जा रहा है। अगले रविवार को सुशील जी फिर मुलाकात होगी आपसे सब लोगों से
0: मुलाकात होगी अगले रविवार को। अहाँ सबके लिए बहुत कुछ है कला के क्षेत्र में संस्कृति के क्षेत्र में बहुत सारा बातचीत है और बहुत किछु एहन चीज छै जे अपने सबके लेल नया हेतै तऽ अबियौ जुड़ियौ आर एहिमे पार्टिसिपेट करियौ। तखन तक के लेल एहि वेबसाइट www.mithilaculturalsociety.au से जुड़ल रहू, फोन करैत रहू और मैसेज भेजैत रहू। सब गोटे के बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम
1: प्रणाम
3: प्रणाम।

0: Radio 2098.5 FM Community Program.
1: Samajik Hindi Karyakram Darpan Akashvani 2098.5 FM.
0: Welcome to the Hindi Show, featuring news, interviews, music and community announcements.
1: Swagat hai Darpan Hindi Karyakram mein. Aap sunenge samachar, vichar, sangeet aur samajik suchnaye.
0: Radio 2098.5 FM, Multicultural Radio.
2: Aaj ravivar, युगा 5126 कलयुग विक्रम संवत 2083 श्रवण मास की शुक्ल चतुर्थी 16 अगस्त 2026 है। दर्पण के सुनने वाले सभी श्रोताओं को भारत की 80वीं वर्षगांठ की दर्पण परिवार की ओर से बधाई व पूनम की नमस्ते। आज के समाचार इस प्रकार हैं। पीएम मोदी ने देश की 80वीं स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से देश को संबोधित करते हुए सप्त सिंधु का खास तौर पर जिक्र किया। भारत की 80वीं वर्षगांठ के इस अवसर पर उन्होंने देश के सामने सप्त शक्ति का नया विचार रखा। पीएम ने कहा कि भारत प्राचीन सप्त सिंधु सभ्यता का देश है। जिस तरह प्राचीन काल में सात नदियों के प्रवाह ने भारत को समृद्ध, खाद्यान्न से परिपूर्ण और सांस्कृतिक रूप से मजबूत बनाया, ठीक उसी तर्ज पर आज भारत को आधुनिक वैश्विक मंच पर शीर्ष तक पहुंचने के लिए सात नई शक्ति धाराओं के एकीकृत प्रवाह की आवश्यकता है। इसी विचार के आधार पर पीएम ने भविष्य के भारत के लिए सात प्रमुख लक्ष्य तय किए हैं। इसी सप्त सिंधु का जिक्र कर भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद से मिलता है। पीएम मोदी ने प्राचीन नदियों के इस एकीकृत प्रवाह से प्रेरणा लेते हुए आधुनिक भारत के लिए सप्त शक्ति का खाका तैयार किया। जिस प्रकार प्राचीन काल में सात नदियों के जल से देश को हर दृष्टि से संपन्न और मजबूत बनाया था, उसी प्रकार 21वीं सदी के भारत को आगे ले जाने के लिए सात नई शक्ति धाराओं की पीएम मोदी ने देश के विकास में जरूरी बताया है। इससे भारत आर्थिक, आधुनिक, तकनीकी, सैन्य और सामाजिक पंक्ति में दुनिया में सबसे आगे खड़ा हो सकेगा। नीट पेपर लीक विवाद के बाद उच्च शिक्षा सचिव की नियुक्ति की गई है। केंद्र सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए सीनियर ब्यूरोक्रेट दीप्ति गौर मुखर्जी को नया उच्च शिक्षा सचिव नियुक्त किया है। सरकार ने हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के सचिव विनीत दोषी का तबादला भी कर दिया। दीप्ति गौर मध्य प्रदेश की 1993 बैच की आईएएस अधिकारी हैं। वर्तमान में कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय में सचिव के पद पर कार्यरत हैं। नीट पेपर लीक विवाद के बीच दीप्ति का नया उच्च शिक्षा सचिव बनाया जाना काफी अहम माना जा रहा है। उद्योगपति और अदाणी समूह के अध्यक्ष गौतम अदाणी को अमरीकी कोर्ट ने से बड़ी राहत मिली है। अमरीका में के न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन स्थित यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अमरीकी न्याय विभाग पेश डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस डीओजी की इस याचिका को स्वीकार करते हुए गौतम अदाणी के खिलाफ धोखाधड़ी और रिश्वतखोरी के आपराधिक आरोपों को खारिज कर दिया है। कानपुर में एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में 50 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवर गायब का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने बताया यह बैंक लॉकर 2003 में खुला था, लेकिन लंबे समय तक उसे चेक नहीं किया गया। चार महीने पहले जब इस लॉकर को चेक किया तो उसमें रखे जेवर गायब थे। पुलिस की खोज जारी है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान मध्य प्रदेश के सीहोर के सेठ जुम्मा लाल के परिवार द्वारा ब्रिटिश हुकूमत को दिए गए 35,000 रुपये वॉर लोन के मामले में एक बड़ा मोड़ सामने आया है। वर्ष 1917 में सेना के खर्चों के लिए दिए गए इस कर्ज की देनदारी को लेकर ब्रिटेन सरकार ने सकारात्मक रुख अपनाया है और परिवार से इस मामले से जुड़े तमाम दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए कहा है। जुमालाल के बेटे और पोते ने ब्रिटिश सरकार के डेट मैनेजमेंट ऑफिस को लीगल नोटिस भेजा था। इस नोटिस के औपचारिक जवाब में यूके सरकार ने मामले को खारिज करने की बजाय आगे जांच की बात की है और दस्तावेजों को लंदन स्थित गिल्ट रजिस्ट्रार के सामने प्रस्तुत करने को कहा है। राज्यसभा सांसद और पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने पंजाब में बढ़ती नशे की समस्या को लेकर आवाज़ उठाई। उन्होंने सोशल मीडिया से लेकर संसद तक इस मुद्दे को गंभीरता से उठाते हुए कहा कि राजनीति छोड़कर पंजाब को ड्रग मुक्त कराने के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। भारतीय नौसेना के लिए बनाए जा रहे नए पीढ़ी के ऑफशोर पेट्रोल वेसल यानी NGOVP में से एक पोत श्रुति का 11 अगस्त को जलावतरण किया गया। यह पोत लोग कोलकाता स्थित गार्डन रीच शिप बिल्डर्स और इंजीनियर्स ने बनाया है। इसका इस्तेमाल समुद्री निगरानी के लिए किया जा रहा है। ये पोत समुद्र में फंसे लोगों की तलाश और बचाव में मदद करेगा। समुद्र में मौजूद तेल प्लेटफॉर्म और दूसरी महत्वपूर्ण संपत्तियों की सुरक्षा भी इनकी जिम्मेदारी होगी। इसके अलावा प्राकृतिक आपदा के समय राहत और बचाव अभियान में भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन एक बार फिर बौखला गया है। भारत ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की 27 जगहों को उनके भारतीय नामों के साथ आधिकारिक नक्शे में शामिल किया है। भारत ने साफ कर दिया है कि अरुणाचल भारत का अभिन्न हिस्सा है। चीन दावा करता है कि अरुणाचल प्रदेश दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा है। चीन अरुणाचल को तिब्बत का हिस्सा बताता है, लेकिन तिब्बत भी तो उसका नहीं है। तिब्बत पर उसने जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है। हमारे घर में रखे पुराने कपड़ों का आखिर क्या होता है? जो कपड़े बिल्कुल पहनने लायक नहीं रहते वे लैंडफिल का हिस्सा बन जाते हैं, लेकिन अगर इन्हीं पुराने कपड़ों को दोबारा इस्तेमाल होने वाला संसाधन में तब्दील कर दिया जाए तो तस्वीर पूरी तरह से बदल सकती है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में इसी सोच के साथ टेक्सटाइल वेस्ट को सकारात्मक आकार देने के लिए केवल नगर निगम ही नहीं बल्कि युवा डिजाइनर, महिलाएं, सेल्फ हेल्प ग्रुप और आम नागरिक भी जुड़ गए हैं। इसी सोच के सेक्युलर इकोनॉमी और वेस्ट टू वेल्थ से जोड़ा जा रहा है। पंजाब की राजनीति में एक बार फिर बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल के संभावित गठबंधन को लेकर चर्चाएं तेज हैं। हाल ही में SAD प्रमुख सुखविंदर सिंह बादल की PM मोदी से मुलाकात के बाद ये अटकलें बढ़ गई हैं। लगभग 6 साल बाद दोनों पुराने सहयोगी फिर साथ आ गए हैं। हालांकि राजनीतिक जानकारों का मामला है कि यह राह उतनी आसान नहीं जितनी दिखाई देती है। झारखंड लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं की जांच के बीच गिरफ्तार TDPL के मार्केटिंग मैनेजर अभय तिवारी ने CID के सामने पूरे मामले का कच्चा चिट्ठा खोल दिया है। उसने बताया कि अभ्यर्थियों को एजेंट और बिचौलियों के जरिए इस नेटवर्क तक पहुंचाया जाता था। अभय के अनुसार एक ऐसा नेटवर्क बुना गया कि प्रति अभ्यर्थी 15 लाख रुपए देकर इस परीक्षा में सफल हो सकता था। अभय ने बताया कि जिस सदस्य या अधिकारी के साथ सेटिंग होती थी उसी से जुड़े इंटरव्यू बोर्ड में भेजने की व्यवस्था की जाती थी। इंटरव्यू से पहले अभ्यर्थी को कोड डिकोड कराने की व्यवस्था भी की जाती थी। भारत रक्षा क्षेत्र में तेजी से आत्मनिर्भर बन गया है। भारत ने बहोर्स अग्नि जैसे घातक मिसाइल्स बनाई हैं जिससे दुश्मन कांपता है। भारत नए नए हथियार और मिसाइल्स तो बना ही रहा है, साथ ही अपनी पुरानी मिसाइल्स को भी अपग्रेड कर रहा है। भारत की अग्नि 5 मिसाइल की बढ़ती क्षमता की दुनिया भर में डिफेंस सेक्टर में चर्चा हो रही है। भारत ने अग्नि 5 मिसाइल से ऐसा अपग्रेड किया है जिससे एक तीर से कई शिकार होंगे। चीन के डिफेंस एक्सपर्ट्स भी इस अपग्रेड को देखकर हैरान हैं। इस अपग्रेड के बाद हथियार आसानी से 10,000 किलोमीटर तक की रेंज को हासिल कर पाएंगे। आज के इस दौर में जब छोटे परिवारों का ज़माना है, वहीं आंध्र प्रदेश से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो आपको हैरान कर देगी। अनंतपुर ज़िले के कुरापिल्ली गांव में रहने वाला नागप्पा परिवार आज भी संयुक्त परिवार की इस पुरानी भारतीय परंपरा को पूरी शान से जिंदा रखे है। कहने को यह परिवार पास पास में बने 4 अलग अलग घरों में रहते हैं, लेकिन इनकी रसोई और इनका पूरा जीवन एक ही धागे में पिरोया है। इस परिवार में 83 सदस्य हैं, जिनमें 6 पीढ़ियां रहती हैं। परिवार की कमान 2 बुजुर्गों के हाथों में है। इस एक परिवार में 6 सास, 14 बहुएं और 20 बच्चे एक साथ रहते हैं। इतने बड़ी परिवार के में व्यवस्था बनाए रखना किसी चुनौती से कम नहीं। फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट आखिर 250 फीट नीचे कैसे आई? इतना भयानक टर्बुलेंस आखिर कैसे हुआ? कुछ ऐसी जानकारी सामने आई है जिससे सिर्फ पायलट के नशे में होने की वजह से फ्लाइट में यह स्थिति पैदा हुई। इस पर फिलहाल संशय बना हुआ है। जेट में टेक्निकल खराबी के बाद जांच से पता चला है कि प्लेन के पूरे कंट्रोल सर्फिस ने 4 सेकेंड के लिए पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया था। इसी वजह से भयानक टर्बुलेंस की स्थिति पैदा हुई। ब्लैक बॉक्स की जांच से पता चला कि जेट के तीनों हाइड्रोलिक सिस्टम में किसी तरह की खराबी के कारण उन 4 सेकंड के दौरान 8320 NEO में एलिवेटर और एरॉन बिना पायलट कमांड के ही अपना काम करने लगे। फ्लाइट ऑपरेशन में इस तरह की घटना पहले कभी नहीं देखी गई। NDTV से मिली जानकारी के हवाले से जेट के लैंड करने के बाद एयरलाइन में डिजिटल फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर से पूरा डाटा डाउनलोड किया और उसे तुरंत एनालिसिस के लिए भेजा। तब से ही एयरबस और फ्रांस की जांच एजेंसी BEA के एक्सपर्ट नई दिल्ली पहुंच गए हैं। उनकी विमान की जांच चल रही है। पायलट कैप्टन संदीप वशिष्ठ नशा टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए। इस कारण इंडिया के एयर इंडिया एक्सप्रेस को के सभी पायलट्स को टेस्ट करवाने का आदेश दिया गया है। खेल समाचारों में इंडिया वर्सेस श्रीलंका फर्स्ट टेस्ट मैच खेला गया। गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में हो रहे सीरीज के शुरुआती मुकाबले के पहले दिन ही भारतीय टीम मजबूत स्थिति में है। दूसरे सेशन का खेल जारी है। भारतीय टीम के लिए यह मुकाबला बेहद खास है क्योंकि शुभमन गिल की कप्तानी में टीम इंडिया अपने टेस्ट इतिहास का 600वां मैच खेल रही है। फिल्मी दुनिया। स्वतंत्रता दिवस पर बंटवारा 1947 और आवारापन 2 के बीच बॉक्स ऑफिस पर कड़ा मुकाबला जारी है। यहाँ एक तरफ आइकॉनिक किरदार शिवन पंडित की पर्दे पर वापसी हुई है और दूसरी तरफ राजकुमार संतोषी और सनी देओल की सुपरहिट जोड़ी एक नए ऐतिहासिक ड्रामा के साथ फिर से साथ आई है। नितिन कक्कड़ के निर्देशन में बनी आवारापन 2 में इमरान हाशमी के साथ दिशा पटानी, शबाना आजमी और सुखविंदर विक्की हैं। दूसरी ओर बंटवारा 1947 असगर वजाहत के प्रसिद्ध नाटक जिस लाहौर ने ही वेख्या वो जमिया ही नहीं पर आधारित है। फिल्म विभाजन के दौर की कहानी है। इस फिल्म में सनी देओल, प्रीति जिंटा, अली फजल, करण देओल और शबाना आजमी मुख्य कलाकार हैं। दिल्ली सराफा बाजार बंद होने तक स्टैंडर्ड सोने का भाव 57,170 रुपये प्रति 10 ग्राम है। डॉलर की विनिमय दरें इस प्रकार हैं। अमरीकी डॉलर 95 रुपये 45 पैसे, ऑस्ट्रेलियन डॉलर 67 रुपये 5 पैसे। इसी के साथ इस सप्ताह के समाचार समाप्त हुए।
3: श्रोताओ, आज आप अपना दर्पण हिंदी रेडियो प्रोग्राम सुन रहे हैं। आपने पूनम जी की मधुर आवाज़ में समाचार सुनी लिए हैं। हमारे साथ में डॉक्टर राजय भी आ गए हैं और हमारे आज खास मेहमान भी हैं और उन खास मेहमानों का परिचय हमारे अजय जी कराएंगे। लेकिन पूनम जी, आज का विचार क्या है?
2: जी, आज का विचार मैंने रेखा राजवंशी जी के ही विचार से लिया। बहुत सुंदर लिखा है उन्होंने। करते शत शत नमन आज आज़ादी के दीवानों को देश की खातिर कर डाला न्योछावर अपने प्राणों को, फांसी हुई या जेल गए या चले गए काला पानी, कैसे भुला पाएं उन वीरों की बलिदानों को। आज़ादी सिर्फ एक शब्द नहीं, हजारों सपनों और कुर्बानियों का नाम है। 15 अगस्त, गर्व से कहो हम हिंदुस्तानी हैं। चलो फिर से वही नारा लगाएं, भारत माता की जय। 15 अगस्त की सबको ढेर सारी शुभकामनाएं।
3: बहुत अच्छा विचार, आज का समय अनुकूल हो गया आपका
2: जी।
3: तो आज कल जैसे हम लोग बात कर रहे थे, एक मैंने भजन ऐसा लिया है
2: जी,
3: शायद वो काफ़ी पॉपुलर भी है, लेकिन इसकी कुछ खास बातें जो बिल्कुल यूनिक है, पहली बार हम दर्पण में बजा रहे हैं
2: जी।
3: हमारी आज दो पहली भी होंगी, और उस तो हम 5 टिकट देने वाले हैं, एक हमारा शो होने वाला लोकल, उसके बारे में डॉक्टर साहब बताएंगे, और एक है हमारा पहली बंटवारा फिल्म जिसके बारे में आपने बताया था, तो उसमें एक जीतने वाले को पास मिलेगा जिसमें 2 लोग जा सकते हैं। डॉक्टर साहब आप कैसा फील कर रहे हैं ये जो विनर के लिए?
4: हाँ, बहुत अच्छी बात है, आज जो लोगों के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे सवालों का जवाब दे,
3: हाँ जुड़ने का। हाँ जा, तो हम बताएंगे कि आप वो 5 टिकट कैसे ले सकते हैं, डॉक्टर साहब थोड़ी देर में आपको बताएंगे, और बंटवारा फिल्म का हम बाद में ट्रेलर भी बताते हैं। तो एक जो नया भजन हम सुनवाते हैं, और देखिए उसमें आप पहचानिए कि क्या आपने इसमें नया है, इससे शुरुआत करते हैं, शायद यह भी एक पहेली का हिस्सा हो सकता है।

0: दर्पण रेडियो सुन रहे सभी श्रोतागण को प्यार भरी नमस्कार। क्या आप अपने प्रियजनों के लिए भरोसेमंद और स्नेहपूर्ण देखभाल की तलाश में हैं? श्री ओम केयर में हम वरिष्ठ नागरिकों के लिए सम्मान, गरिमा और घर जैसा माहौल देते हैं। हमारी सेवाओं में शामिल हैं इन होम केयर, डिसेबिलिटी केयर और डेमेंशिया व अल्जाइमर सपोर्ट, साथ ही स्पेशल सपोर्ट, एडवाइजरी सर्विसेज और संस्कृति व भाषा के अनुसार विशेष देखभाल। हम 24/7 असिस्टेड लिविंग, रजिस्टर्ड नर्सिंग, रेस्पाइट केयर और हेल्दी एजिंग एक्टिविटीज भी प्रदान करते हैं। हम माई एज केयर, NDIS और प्राइवेट केयर विकल्पों के माध्यम से आपकी पूर्ण सहायता करते हैं। श्री ओम केयर, जहां देखभाल परिवार जैसी लगती है। अधिक जानकारी के लिए आज ही कॉल करें 1300-908-681 या फिर वेबसाइट विजिट करें shriomkare.org.au। धन्यवाद।
1: श्रोताओं, जैसा कि हमने बताया था कि हमारे साथ में आज काफ़ी मेहमान हैं, और वो ऐसे मेहमान हैं जो अपने साथ में एक इतिहास लेके हमारे साथ में आए हैं। वो ऐसे मेहमान हैं जो हमारी आज़ादी जो 1947 में हुए उस समय उन्होंने देखा था। आज ये बहुत ही भावनात्मक माहौल है स्टूडियो में हमारे, उनसे हम बातें करेंगे। हमारे डॉक्टर साहब ने काफ़ी उनके लिए प्रश्न भी बनाए हैं, तो डॉक्टर साहब क्यों ना एक उनका परिचय हो जाए और आप बताइए कि क्या क्या उनके लिए प्रश्न लेके आए हैं, जिससे कि लोग जुड़ सकें उस क्षण से इन हमारे महान विभूतियों के साथ में।
2: 15 अगस्त 1947 का जो दिन था, भारत के लिए खुशी का माहौल तो था कि इतने सालों बाद अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली है, पर उसके साथ साथ एक दुख भी जुड़ा हुआ था कि देश का बंटवारा हो रहा था। तो जो बहुत ही टर्बुलेंट टाइम थे उस टाइम पे, मतलब कोई खुशी का मौका होता है कि देश आज़ाद हुआ तो सब सेलिब्रेट करें, पर माहौल गम भी था वहाँ पे। तो ऐसा जो माहौल था उसको हमारे साथ में आज के जो हमारे अतिथि हैं उन्होंने उसको देखा, आँखों से देखा और उन कहानियों को कानों से सुना, जो आज़ादी की खुशबू थी उसको छूंगा। तो हमारा बहुत बहुत सौभाग्य है कि हमारे पास स्टूडियो में हैं संत राम बजाज जी, ब्रह्म शर्मा जी और तिलक कालरा जी। तो हम इनसे बात करेंगे उस ज़माने की। पर मैं चाहता हूँ कि भारत को आज़ादी जो मिली थी उसकी एक थोड़ी सी पृष्ठभूमि में बता दूँ, तो मतलब कैसे शुरू हुआ भारत, कैसे अधीन हुआ फिर स्वाधीन हुआ। तो जैसे आपको पता है कि जो भारत का एक कंसेप्ट तो था और लोगों ने सुन रखा था यूरोप में कि एक भारत बहुत बड़ी सोने की चिड़िया है, तो लोग हमेशा वहाँ पर आते थे। तो सबसे पहले जो थे डच लोग आए
3: जी,
2: वो आए थे 1498 में। तो ये बेसिकली व्यापारी थे, पर उन्होंने व्यापार तक सीमित नहीं रखा अपने आप को। तो उनकी ये मंशा थी कि व्यापार भी करें और शायद देश पे अपना सिक्का भी जमाएं।
3: बिल्कुल।
2: तो पर जो डच थे वो मतलब गोवा, कालीकट वहाँ पे रहे, फिर फ्रेंच आए और फिर उसके बाद में जो है ब्रिटिश लोग आए,
3: ईस्ट इंडिया कंपनी।
2: हाँ, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, मतलब सरकारी तौर पर नहीं थे, एक कंपनी बनी हुई थी उनके, बाकायदा स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड थी। और वो आए थे सबसे पहले सूरत में, और साल था वो 1613। तो सूरत में छोटा सा उनको एक मतलब पैर रखने की जगह मिली, तो वहाँ से उन्होंने अपने अपने पैर जमाना शुरू किए। तो धीरे धीरे धीरे वो ट्रेड करते रहे, और फिर उनको लगा कि जो यहाँ पे तो बहुत फ़ायदा हो रहा है, तो उन्होंने लड़ी एक बैटल ऑफ प्लासी जिसको कहते हैं,
3: बड़ा मशहूर बैटल।
2: जी हाँ, तो वो हुई थी 1764 में। तो उन्होंने सिराजुद्दौला को उन्होंने पराजित किया और वहाँ पे उन्होंने ब्रिटिश राज इस्टेब्लिश किया, मतलब ब्रिटिश ने ईस्ट इंडिया कंपनी का। और मतलब वो काफ़ी बंगाल का जो एरिया था बहुत ही प्रॉस्परस एरिया था, वहाँ पे जूट वगैरह की फार्मिंग होती थी। तो वहाँ से उन्होंने सिक्का जमाना शुरू किया। फिर जो है दक्षिण में टीपू सुल्तान से उनकी लड़ाई हुई, तो टीपू को हराया तो सारा दक्षिण उनके हाथ में आ गया। फिर उन्होंने जब मराठों को हराया तो मराठा अपने हाथ में आ गया, पूरा सेंट्रल एरिया। और आखिर में जो है जो सिख वॉर हुई थी, एंग्लो सिख वॉर, वो 1849 में वो जीत करके उन्होंने सारे भारत पे कब्जा किया। तो ऐसे भारत मतलब आ गया। तो फिर आया 1857, तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी सब जगह बन गई तो तब तक मतलब उन्होंने भारत को अधीन कर लिया था. उसमें क्या था, उनके पास बड़ी सेना थी, सेना में 300,000 सिपाही थे जो कि ज़्यादातर मतलब भारतीय थे. तो उनको मतलब खबर मिली, रूमर थी कि वो बड़े धार्मिक हुआ करते थे, हिंदू भी थे मुसलमान भी थे, कि उनको कन्वर्ट किया, धर्म उनका धर्मांतरण किया जा रहा है. और जो उनकी सैलरी भी कम थी और उनके साथ जो है ना प्रमोशन में भेदभाव भी किया जाता था, तो उन्होंने थोड़ी बगावत की, उसमें थोड़ी सी आग उनमें जल रही थी. तो एक आया वहाँ पे कि उनको नई राइफलें दी गई, पिस्तौल दी गई, एनफील्ड राइफ़ल कहते थे. तो उस पर कहा कि जो है जो राइफ़ल है उसको जो बारूद रहता है उसके अंदर पड़ता है तो मुँह से काटना पड़ता है, और उसके अंदर चर्बी गाय की और सुअर की दोनों की थी. तो ये हिंदू और मुसलमान दोनों थे, दोनों को भी कबूल नहीं था वो. तो वहाँ से बगावत भड़की. आपको पता होगा 1857 में जो म्यूटिनी कहते हैं वो जो है मेरठ से शुरू हुई, और मेरठ में उन्होंने सिपाहियों ने बगावत करी और फिर दिल्ली तक पहुँच गई वो. और दिल्ली में उन्होंने बहादुर शाह जफर थे उनको शहनशाह हिंदुस्तान जो उन्होंने डिक्लेयर किया. पर ये कोई ऑर्गेनाइज ढंग से नहीं था पूरा, मतलब ब्रिटिश के खिलाफ. तो मतलब जगह जगह हुई. तो और फिर वहाँ पे झांसी की रानी थी, उन्होंने झांसी में शुरू किया, फिर लखनऊ में अवध बगावत हुई. पर अंग्रेज़ों ने बड़ी बुरी तरह से उसको कुचल दिया वो. और फिर अपना वहाँ पे जो मतलब भारतीयों को निकाल दिया, अंग्रेज सिपाही लेकर के आए. तो कहते फर्स्ट बैटल ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब कोई ऑर्गेनाइज बैटल नहीं थी, पर कहा जाता है कि म्यूटिनी है, सिपाही म्यूटिनी कहते थे
3: 1857 की.
2: हाँ
3: जी.
2: तो उन्होंने बड़ी बुरी तरह कुचल दिया और वहाँ से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ख़त्म हुई और जो अंग्रेज़ सरकार थी मतलब अंग्रेज हुकूमत उनका राज हो गया. और 1871 में क्वीन विक्टोरिया को भारत की एम्प्रेस डिक्लेयर किया गया. तो भारत डायरेक्टली जो है ब्रिटिश रूल के अंदर में आ गया. अब फिर उसके बाद में जो है धीरे धीरे हुई कि भाई कोई कहीं ना कहीं आज़ादी होनी चाहिए, तो पर बहुत दबी दबी आवाज़ में होता था वो. 1866 में इंडियन नेशनल कांग्रेस उसका गठन हुआ, पर उसको बनाने वाले भी कोई एक ब्रिटिश थे वो एलन एक्टिवन ह्यूम. तो वो जो है कोई ऐसा नेशनल मूवमेंट नहीं था. तो उन्होंने कहा कुछ लोग थे जो पढ़े लिखे थे, ब्रिटिश में पढ़े लिखे थे, उनकी एक कमेटी बनाई और जाकर के पूछे कि लोगों से कि भाई हमारे जो इंडियन लोग हैं उनके थोड़े राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, उनको जो अच्छे वेजेस मिले जाएँ, और कोई आज़ादी वगैरह की बात थी नहीं वो. तो गुप्ता जी मैंने बोल दिया, थोड़ा सा एक गीत वगैरह सुना दें,
4: थोड़ा ब्रेक हो जाए जी. और उसमें जो हम वंदे मातरम वाला आजकल काफ़ी चल रहा है, तो ये वंदे मातरम वाला भी जो गाना है शायद आपने, शायद मेरा दावा हो सकता है, मैं दावा कर सकता हूँ इस तरीके का आपने वंदे मातरम नहीं सुना होगा. तो हम श्रोताओं को एक वो वंदे मातरम सुनवाते हैं नए उसमें, और इसके बारे में भी अगर कोई हमें बताए कि इसमें क्या है ऐसा खास.

0: भाई साहब ये करी मास्टर्स और अन्य मसालों में क्या अंतर है
1: बहन जी करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स है इसमें आनियन गार्लिक जिंजर टमाटर नमक मिर्च हल्दी धनिया वे सभी मसाले मिले हुए आते हैं ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में लाजवाब है इट्स सो इजी इनकी वेबसाइट का एड्रेस है www.currymasters.com.au
2: ये थी हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश श्रोताओ जैसे मैंने बोला ये भजन और ये वंदे मातरम गाना हम पहले यहीं से शुरू कर देते हैं डॉक्टर साहब अच्छा बताइए किसने गाया है ठीक है कौन इसका कंपोजर है आप थोड़ा बताइए इसके बारे में और तो ये गाया किसने मेरा प्रश्न ये था लिखा नहीं गाया किसने है और तो जो भी इसके बारे में बता और किसने इसको कंपोज करा है क्योंकि इसकी धुन अलग है तो पहला वाला जो हमने भजन गाया था वो बलोच अगर आप यूट्यूब पर इसको सर्च करेंगे तो बलोच लड़की ने समझो ऐसे गाया है लेकिन शायद ऐसा नहीं
3: उसकी आवाज में कितना कितना
2: है ना और ये वंदे मातरम भी बिल्कुल अलग
3: है मुझे तो एक्चुअली वो एबोरिजिनल म्यूजिक का क्या वाला फ्यूजन लग रहा था
2: यही तो दर्पण रेडियो की खासियत है पूनम जी तो ये चैलेंज है आप जो भी करना है गूगल करना जो भी करना करिए बताइए कि ये इनमें से कोई भी गाना किसने गाया है और किसने इसको कंपोज करा है और यहाँ से शुरुआत करते हैं तो डॉक्टर साहब वो बताएंगे कि जो हमारी पहली है 5 टिकटों वाली
4: हाँ तो जो कार्यक्रम हो रहा है इसका नाम है सुहाना सफ़र सीरीज 2
2: अच्छा जी इसका मतलब पहले
4: इसका नाम है
2: जी
4: तो ये इसके पीछे जो ऑर्गेनाइज़र हैं वो हमारे केदार जी हैं उससे हमें मतलब उनसे बातचीत कराने की कोशिश करेंगे आपकी तो वो आपको केदार जी
2: बात पाएंगे
4: पर ये मैं संक्षिप्त में बता दूँ ये जो है कार्यक्रम ये हो रहा है 27 अगस्त को और नॉर्थ राइड स्कूल ऑफ आर्ट्स में जिसके आप जाके टिकट खरीद सकते हैं पर इसके टिकट हमारे पास हम लोगों को देंगे
2: पहले 5 टिकट देने वाले हैं श्रोताओं 5 विनर को हम ये मिलेंगे एक एक टिकट हर एक को ठीक है ना डॉक्टर साहब
4: जी हाँ
2: ठीक है तो एक तो ये बात होगी और जो बंटवारा फिल्म आई है जिसके बारे में आपने कहा है बंटवारा तो उसका भी एक हम ट्रेलर सुना देते हैं
4: जी
2: इस फिल्म ये फिल्म रिलीज हो चुकी है कहते हैं कि बहुत ही भावुक और बहुत ही मार्मिक इसका है तो इस फिल्म को देखने के लिए भी आप जा सकते हैं विनर को एक पास मिलेगा जिसमें 2 टिकट होंगे
5: देश की आज़ादी मुबारक हो
6: आपको भी बहुत मुबारक
7: कौन सी आज़ादी और किसका मुल्क ये हिंदुओं का मुल्क है हिंदुओं का
6: खुदा के लिए यहाँ से निकलिए

0: कौन है आप
1: तुमको जी तुम कौन हो जो मेरे कार में घुस आए
2: कस्टोडियन वालों ने ये मकान हमें अलॉट किया है आप यहां नहीं रह सकती
1: मैं कितने नहीं जाना ये मेरा घर है
3: पर मैनू लगदा है कि तैनू मुसलमान से ज्यादा हिंदू की फिक्र है
4: आप मुझे धमका रहे हैं
3: पंगा लेना है
4: इरादा तो नहीं
5: देखेंगे

0: सो तो ये आपने टेलर सुना है, फिल्म है बंटवारा, नई फिल्म है, ये ऑलरेडी चल रही है, सिडनी में भी चल रही है, पूरे ऑस्ट्रेलिया में चल रही है, ज़रूर जाके देखिए और अपना अगर किसी ने देखी है हमारे साथ में वो शेयर कर सकते हैं अपना एक्सपीरियंस। हमारा नंबर है आज के लिए 0421-590-791 या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आप हमें लिख सकते हैं। तो डॉक्टर साहब हमारे जो मेहमान हैं उनका परिचय हो जाए।
1: तो मैं जिस भारत का स्वतंत्रता संग्राम था उसका एक भूमिका दे रहा था, मैं इनका शुरू में भूमिका दे दूं फिर अपने मेहमानों से
0: जी, जी, बात करेंगे। बहुत जरूरी बात है।
1: तो जो मतलब देश जो है अंग्रेजों के अधीन हो गया था पर एक ललक थी कि जो है स्वराज होना चाहिए, अपना राज होना चाहिए, हम स्वतंत्रता होना चाहिए, पर उसको हमें समय लगा। तो जैसा कि मैंने बताया था कांग्रेस का गठन हुआ था शुरू में, पर शुरू में कांग्रेस बहुत ही जो मतलब एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन था और उसका कोई ये मंशा नहीं थी कि देश को आज़ाद करा जाए, उसके लिए बनी हुई कांग्रेस। तो ये सन 1900 तक आते आते एक कांग्रेस एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में एक उन्होंने फॉर्म होने लगी थी। तो उसमें भी दो खेमे थे कांग्रेस, एक खेमा था ऐसा जो जैसे बाल गंगाधर तिलक थे वो कहते थे कि स्वराज होना चाहिए, बाकी लोग कहते कि नहीं हम अंग्रेज़ों के अधीन रहेंगे पर अपने पॉलिटिकल राइट्स के लिए लड़ते रहेंगे कि भाई तो हमारे पास राइट्स ज़्यादा हों, कोई इंडिपेंडेंस की तरफ उनका झुकाव नहीं था। तो तीन लीडर कहे जाते थे बाल, पाल और लाल, जैसे इसमें बाल गंगाधर तिलक हो गए, लाला लाजपत राय हो गए और बीसी पाल। इन्होंने थोड़ा सा मिलिटेंट किया, नॉन वायलेंट ही थे पर वो कहते थे कि एक इंडिपेंडेंस या स्वराज होना चाहिए। फिर आया 1905, तो उधर क्या हुआ कि जो मुसलमान थे उन्होंने कहा कि हमारे अलग हित होने चाहिए, उन्होंने अपने हितों की रक्षा करी। तो एक तरफ मुसलमानों का बाहुल्य था वहाँ पे ईस्ट वेस्ट में जो आज का पाकिस्तान है, और दूसरा था यहाँ पे बंगाल में जो बंगाल और आसाम में। तो अंग्रेज़ों ने चाल चली डिवाइड एंड रूल की, उन्होंने बंगाल को डिवाइड कर दिया ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में। तो ईस्ट बंगाल जो है मतलब मुस्लिम बाहुल्य था, वेस्ट बंगाल में जो हिंदू थे तो वो लोगों को अच्छा नहीं लगा बंटवारा। तो वहाँ से जो है स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुआ, और जो जितने मतलब वहाँ पे ईस्ट बंगाल थे तो उन्होंने कहा कि भाई स्वदेशी होना चाहिए सब कुछ, और वहाँ से स्वतंत्रता की लड़ाई को थोड़ा सा ज़्यादा बल मिला। और फिर उसके बाद में जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार जब हुई तो कई सारे भारतीयों ने सोचा कि हम अगर साथ देंगे अंग्रेज़ों का तो अंग्रेज शायद हमसे ज़्यादा लीनियंसी बरतेंगे और हमें ज़्यादा राइट्स देंगे। तो काफ़ी हद तक भारतीयों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया पहली वर्ल्ड वार में, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, अंग्रेज़ों ने कुछ मतलब बहुत ज़्यादा कंसेशन दिए नहीं इंडियंस को। फिर 1919 में एक एक्ट आया जिसका था नाम रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट में ऐसा था कि जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हों उनको आप पकड़ के बंद कर सकते हैं, कोई उन पर मतलब चार्ज प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं, कोई कोर्ट में ले जाने की ज़रूरत नहीं है। तो उससे लोग बहुत भड़के, लोगों का ना बहुत मतलब जोश हुआ कि ये कैसा हमारे पर इम्पोज किया जा रहा है, और डेमोन्स्ट्रेशन हुए सब काफ़ी। तो उसी के चलते चलते जलियांवाला बाग हुआ जिसमें आप जानते हैं कि कितने नेते लोगों पर वार किया गया था, तो करीब 400 लोग का आंकड़ा कहा जाता है पर कहते हैं कि कई असली फिगर कहीं ज़्यादा थी। तो उससे जो एक आग थी वो भड़की, स्वतंत्रता
2: चिंगारी
1: भड़की, हाँ आगे भड़की। तो फिर उसके बाद में उन्होंने गांधी जी आए, वापस आए 1915 में साउथ अफ्रीका से, तो उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू किया और कहा कि भाई ब्रिटिश गुड्स हैं इनको आप बाइकआउट कीजिए, ब्रिटिश एजुकेशन है उसको बाइकआउट कीजिए, हाँ उसको बाइकआउट करे जाए। और फिर 1929 आया तो वो जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट बदल गया। तो उन्होंने कहा कि भाई हम कोऑपरेट नहीं करेंगे, पर मेनली ये था कि जो नॉन वायलेंट रूप से किया जाए। और फिर 1942 में उन्होंने कहा कि क्विट इंडिया मूवमेंट, तब उनकी ये मतलब आवाज़ बुलंद हुई कि जो ब्रिटिश लोग तुम लोग छोड़ करके जाओ भारत को,
2: भारत छोड़ो,
1: हाँ भारत छोड़ो, तो करो या मरो का उन्होंने जो वो दिया था भाषण, वो दिया था नारा दिया था। तो फिर आई वर्ल्ड वार टू तो उस टाइम पे जो ब्रिटिश जब लड़ रहे थे तब उनके आर्थिक हालत खराब हो चुकी थी, तो उनको लगा कि अब हम भारत में ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे, तो भारत को आज़ादी देनी पड़ी थी। तो मतलब ये है सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, जो मतलब आज़ादी ऐसे ही आराम से नहीं मिली, तो शुरुआत होती रही, उसके बाद में धीरे धीरे बल पकड़ती रही। और 1945 में जब उन्होंने कहा कि जो है ब्रिटिश लोगों ने रियलाइज़ किया कि जो है अब देनी ही पड़ेगी भारत को आज़ादी, तो एक
2: तब तक अच्छे से उन्होंने भारत का काफ़ी कुछ जिसे कहते हैं ना सारी वेल्थ ऑलरेडी ले चुके थे।
1: तो 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने एक प्रस्ताव रखा कि भारत का पार्टीशन किया जाए और जो है भारत को आज़ादी दी जाए, और 4 जुलाई को ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, जिसके तहत भारत को आज़ादी दी गई। और 18 जुलाई को जो है उनको रॉयल एसेंट मिली कि भाई ठीक है ये पारित किया जाएगा, और फिर जाके अगस्त में 14 अगस्त को पाकिस्तान को दी उन्होंने आज़ादी, और 15 को जो है भारत को दी। और मज़े की बात यह है कि जब भारत का बंटवारा होना था पाकिस्तान और इंडिया में, उसको उन्होंने बुलाया था रेडक्लिफ को, रेडक्लिफ ने बनाया कि जे भाई यहाँ से जाएगी लाइन, वो आज़ादी के 2 दिन बाद रिलीज़ की गई। 2 देशों को आज़ादी दे दी उन्होंने, पर लाइन कहाँ से खींचेगी वो 2 दिन बाद जो है उन्होंने डिक्लेयर करी, ओपन करी। और उसके एवज में जो है फिर दंगे शुरू हुए, सब जानते ही हैं,
2: ये तो, उनका पर्पस था। हाँ, जाते जाते वो एक
1: तो ऐसा जो दौर था, उस दौर को जो जिन्होंने अनुभव किया वो मतलब कितनी गहरी यादें थी, ऐसे लोग आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं। तो मैं सबसे पहले आमंत्रित करूँगा बजाज जी को। बजाज जी, आपकी याद क्या है उस समय की?
3: पहले तो नमस्कार सबको, आपके श्रोताओं को भी। वो याद जो है कुछ धुंधली हो गई हैं, वो 1947 की बात कर रहे हैं, उस वक्त मैं 11 साल का था। लेकिन हम एक छोटे से कस्बे में रहते थे जो लाहौर से 50 मील था करीब। और इंसिडेंटली उससे पहले मैं बता दूं कि इस वक्त जो बाकी के 2 मेरे साथी बैठे हुए हैं यहाँ पर, वो भी लाहौर के ही हैं। तो अभी बात हो रही थी, जिसने लाहौर नहीं देखा वो जमया नहीं, तो आप हमें देख लीजिए। तो खैर वापस चलते हैं। तो जब मैं उस वक्त 11 साल का था और स्कूल में हम जाते थे, तो उसमें हमें उस वक्त आज़ादी के बारे में कुछ पता नहीं था कि भाई भारत में हम ग़ुलाम हैं। हम तो बल्कि वहाँ पर जब सेकंड वर्ल्ड वार चल रही थी, वो सिपाहियों को देखते थे इधर उधर, स्कूल के रास्ते में मिलते थे हमें, कभी इधर से जा रहे हैं कभी उधर से जा रहे हैं। तो स्कूल में भी हमें वो एक नारा लगाते थे कि या इलाही कर तबाही जर्मन और जापान की, बच्चा बच्चा मांगता है फतेह हो इंग्लिस्तान की। तो बड़े खुशी से हम लोग गाते थे। हमें क्या पता कि ये गांधी जी के बारे में भी बहुत कम, जैसे मैंने कहा हम तो गांव में रहते थे, ज़्यादा सुना भी नहीं था देखा भी नहीं था उनको
1: जी।
3: उनको बस ये उनके भी नारे लगते थे। एक और मैं बता दूं, एक चवानी चांदी की सारी दुनिया गांधी की, चवानी होती है वो
2: चांदी। सोशल मीडिया तो था नहीं,
3: ना कोई सोशल मीडिया नहीं था हमारे गाँव में, रेडियो तक नहीं था क्योंकि बिजली नहीं थी
2: जी।
3: बिजली नहीं थी तो रेडियो नहीं था, उस वक्त ट्रांजिस्टर तो होते ही नहीं थे। तो हमारी याद उसी वक्त ही आई जैसे जब पार्टीशन हुई और हम लोगों को वहाँ से भागना पड़ा। जब वहाँ पर दंगे भी जो थे वो कुछ देर पहले शुरू हो गए थे, लोग वहाँ से गुजरते थे छोटे छोटे।
1: मैं रोकना चाहूँगा वैसे, तो रेडियो नहीं था तो खबरें कहाँ से मिलती थी लोगों को?
3: हाँ जी, ये खबरें तो जैसे वो एक लोग तो चलते रहते थे
1: जी,
3: एक शहर से दुकानदार जाते थे सामान खरीदने
1: जी,
3: या जितने काम करने वाले हैं वो अपना कोई सामान लेने जाते थे, तो खबरें हमें वहाँ से मिलती थी और इसीलिए लेट मिलती थी क्योंकि
2: वर्ड ऑफ माउथ था।
3: हाँ जी, वर्ड ऑफ माउथ, इंस्टेंट तो कुछ था ही नहीं ना,
2: कुछ था ही नहीं।
3: तो खबरें, जैसे आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया कि खबरें कैसे मिलती थी, तो खबरें ये सब मुँह ज़बानी आती थी। तो उसमें लोग दुकानदार ख़ास तौर पे काम जाते थे, अपनी आड़ती, वो हमारे पास एक बड़ी मंडी थी पत्तों की मंडी, वहाँ पर जाके वो अपना गेहूँ ले जाते थे, कपास ले जाते थे जो ज़मींदारों से ख़रीदते थे, तो वो उनसे खबरें मिलती थी। या जो लोग जाके अपनी दुकान के लिए दूसरा सामान लाए, ज़मींदार तो बेचारे वहीं काम करते रहते थे, तो वहाँ से हमें ये खबरें मिलती थी। और कुछ दिन पहले शुरू हो गया था कि भी देखो आज़ाद हिंदुस्तान आज़ाद हो रहा है, जैसे मैंने कहा ना कि वो इधर उधर जब शोर शराबा हुआ तो फिर पता लगने लगा, लेकिन ये नहीं हमें पता था कि हम हिंदुस्तान में आएंगे या पाकिस्तान में। वो कहते थे कि हम रावी के इस साइड में थे तो कहने लगे हिंदुस्तान में जाएंगे।
1: नहीं तो एक मिनट, तो जब आपको आज़ादी की खबर मिली तो ये खबर कब मिली कि बंटवारा भी होगा देश का?
3: यही तो वो बाद में हुआ ना कि अब जो है हिंदुस्तान आज़ाद हो रहा है, अंग्रेज जा रहे हैं
1: जी,
3: लेकिन ये इसको बांट कर जा रहे हैं, मुसलमान अलग हो जाएंगे
1: जी।
3: तो लोगों को इतबार नहीं आ रहा था, यकीन नहीं हो रहा था कि ये कैसे हो सकता है, हम तो सदियों से यहाँ इकट्ठे रह रहे हैं, कैसे बांट देंगे, कैसे जाएंगे। और जो वहाँ पर मुसलमान थे वो भी कहते थे कोई फिक्र की बात ही नहीं है। या हिंदू जो थे वो ये नहीं कहते थे कि जी हम कोई ऐसा ऐसी कोई बात नहीं थी कि भाई
2: नहीं। तो लाहौर में जहाँ आपने बोला आपका कस्बा था, वहाँ पर आसपास मुसलमान भी होंगे?
3: हमारे गांव में थे
2: जी। हाँ, जी तो उनके साथ तो भाईचारा था? बिल्कुल, कोई है?
3: बिल्कुल पूरा भाईचारा था जी। कभी कभी ऐसी हिंदू मुस्लिम का सवाल ही नहीं पैदा,
2: कोई ऐसी बात नहीं।
3: हम तो इकट्ठे स्कूल में पढ़ने जाते थे बच्चे। हमारा स्कूल, हमारे गाँव में स्कूल भी नहीं था, ये और बताऊँ आपको
2: जी।
3: हम हमारे स्कूल जाने के लिए हमें पैदल जाना पड़ता था, बहुत छः मील था अपने गांव से। तो उसमें हिंदू और मुसलमान इकट्ठे जाते थे, इकट्ठे अपना खेलते थे, शाम को वापस भी इकट्ठे आते थे। तो हिंदू मुसलमान का तो सवाल कभी ऐसे हुआ ही नहीं। हमें होगा बड़ों में भी नहीं था कभी, क्योंकि नहीं तो हमारे ऊपर भी वो फिल्टर होके आता ना।
2: नहीं तो जाने की बारी आई कि अब हमें निकलना पड़ेगा, तो उसकी कोई तैयारी हुई या बस एकदम ही सब छोड़ छाड़ के निकल?
3: एकदम
2: सब कुछ वहीं वैसे ही।
3: तैयारी का तो कोई मतलब ही नहीं था जी। तैयारी क्या होती, एक आधा दिन मिला
2: जी,
3: वो भी कहीं मिला कहीं नहीं भी मिला। लकीली हमारे गांव में कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ, गांव में कोई आग नहीं लगी, कोई मार पिटाई नहीं हुई, बल्कि उन्होंने हमें हेल्प की जब निकलने लगे वहाँ से।
2: तो आपकी उम्र उस वक्त क्या थी?
3: मैं उस वक्त 11 साल का।
2: जब पार्टीशन हुआ?
3: जी पार्टीशन जी। हुआ।
4: आपका अनुभव कैसा रहा?
3: हाँ जी,
1: ये शर्मा जी हैं,
4: थोड़ा परिचय भी हो जाए आपका।
1: शर्मा जी हैं, शर्मा जी भी उस टाइम पे लाहौर में ही थे। तो शर्मा जी आप बताइए, आपका क्या अनुभव था?
5: आई वाज बोर्न इन लाहौर, मैं उस समय 13 साल का था, 8वीं क्लास पास की थी मैंने और 9th में हुआ था, स्कूल बंद हो गए थे सारे। तो आई हैव वेरी विविड मेमोरीज, जब हमें याद है, जो मुझे याद है, इतनी जून जुलाई में ही इतनी आगे लगी होती थी फायर्स लाहौर शहर में कि वी यूज़ टू काउंट वो ये यहाँ आ गया है, यहाँ आ गया है। तो एटमोसफेयर वाज नॉट एट ऑल गुड। लेकिन जब हम पढ़ते थे स्कूल में, जैसे उन्होंने बजाज साहब ने कहा है, तो हम बिल्कुल एक ही थे, ये नहीं पता था ये मुस्लिम है ये हिंदू है, दोनों इकट्ठे ही पढ़ते थे, कोई फर्स्ट आ रहा है कोई सेकेंड आ रहा है, तो उस समय नहीं था। लेकिन अंग्रेज़ों ने बड़े तरीके से बीज बोया था ऑफ डिफ्रेंशिएशन बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स। वो क्या था, देखिए ट्रेन स्टेशन पर पानी रखा होता है, तो दो मग होते थे, एक हिंदू पानी एक मुस्लिम पानी।
2: बताइए वहीं से शुरू हो गया डिस्क्रिमिनेशन।
5: दे स्टार्टेड वेरी
2: पानी से,
5: क्लेवरली पानी स्टेशन से
2: धीरे धीरे।
5: हम लोग जो थे उस समय छोटे थे, तो हम पानी मुस्लिम पानी नहीं पिएंगे अगर हिंदू पानी खाली भी हो, प्यासे डालेंगे। तो ऐसे ऐसे उस समय विचार बने हुए थे। लेकिन मैं आप
2: तो ये स्कूलों में मतलब जैसे ये एक तरह से प्रचारित किया जाता था कि भाई हिंदू अलग हैं और
5: नहीं, नहीं हम तो मैं आई वाज स्टूडेंट ऑफ डीएवी स्कूल, तो नो डिफरेंस।
2: अच्छा, वहाँ तो ज़्यादातर हिंदू ही होंगे फिर तो?
5: हाँ सारे हिंदू ही होते थे। लेकिन प्राइमरी स्कूल जब जो था हमारे घर के पास ही था, वो उसमें आधे मुस्लिम आधे हिंदू, टीचर हेडमास्टर वाज हिंदू, वाइस हेडमास्टर वाज मुस्लिम, तो एक सिख भी था उसमें। तो ऐसे टीचर्स बटे हुए थे। तो हम लोगों को जब स्कॉलरशिप के लिए लेके गए थे तो बांट के लेके जाते थे, दो हिंदू दो मुस्लिम ऐसे करते थे।
1: अच्छा,
5: तो एनीवे तो मैं आपको ये बता रहा था कि आई वाज बोर्न इन लाहौर और आई हैव सीन बहुत विविडली, आई रिमेम्बर। तो اس دن کا جو دن ہے اس کے بارے میں زیادہ بتاؤں گا بھائی فادر واز ان ریلویز ہی ہیڈ کم وی ہیڈ بین آسک ٹو ویدر ہی ول آپٹ فار انڈیا اور پاکستان ہی ہیڈ آپٹ فار انڈیا تو ہمارا سب سامان سارا پیک کیا ہوا تھا اور ہمیں ویگن ملنی تھی ریلوے کی طرف سے تو جو وہ ڈیلے کر رہے جانے کے جانے میں مجھے نہیں پتا تو ہم اس میں گھر میں تھے مائی فادر ہیڈ کم فرام آفس تو وہی بس ریلیکسنگ اور حکا پی رہے تھے تو نیچے اس دن فرائیڈے کا دن تھا تو نیچے شور مچ گیا آل آف اے سڈن مسلم کراؤڈ اکٹھا ہو گیا اور وہ سارے کے سارے لاٹھیے اور چاقو اور نعرے لگانے لگے اور ہم لوگ ہم جو تھے فیملی تین فیملیز ہندو تھی تین فیملیز ہندو تھی وہ ساری کی ساری اکٹھی رہتے تھے تو ایٹ دی ٹائم ایٹ دیٹ ٹائم آلسو وہ سارے اکٹھے ہوئے ایک دم کیا یہ کیا ہو گیا ہے تو بہت ہڑبڑ مچ گئی تو آل آف اے سڈن وی ہیڈ ٹو لیو لیکن اس سے پہلے میں یہ بتاؤں گا کہ جو ہمارا گھر تھا وہ موری گیٹ میں تھا اور کچا نان نہال سنگھ واز دی اسٹریٹ وچ واز دی گرینڈ سن آف مہاراجا رنجیت سنگھ ہمارے گھر کے سامنے جو کچا نان نہال سنگھ تھا اس نے وہ حویلی بنائی تھی نہ وہ انڈیا کا نیشنل پاکستان کا نیشنل ہیریٹیج ہے وہ تو وہ بلڈنگ تھی وہ ٹو اسٹوری بلڈنگ تھی ہمارے پانچ منزلہ مکان سے زیادہ اونچی تھی تو ہم لوگوں نے تیاری کر رکھی تھی کہ اگر ایسے ماب آئے گا تو ہم اس پر پتھر پھینکیں گے تیل کے بم پھینکیں گے اب اندر کی دیواریں توڑ تاڑ کے رکھی ہوئی تھیں بوریاں بھری ہوئی تھیں لیکن جب چھت پر گئے اور پھینکنے کی کوشش کی تو بالکل ناکامیاب ہوئے کیونکہ جو سامنے والا اسکول حویلی تھی اس کی نونہال سنگھ کی وہ ہمارے پانچ منزلے مکان سے اونچی تھی تو پولیس اسٹارٹڈ فائرنگ آن اس انسٹیڈ آف فائرنگ آن دی کراؤڈ دے فائرنگ دے ور فائرنگ آن اس
2: سیویلینز
5: ہمارے گولی بھی لگی ایک دو کو تو سارے ڈر گئے تو پلان بات میڈ کے کیا اب کیا کیا جائے
2: جی
5: اس سے پہلے ان کو پتہ نہیں کیسی خبر لگی ہے کہ پاکستان میں لاہور آ گیا ہے ہمارے جو دو کرایہ دار تھے نیچے ایک اسکول تھا چھوٹا سا اور ایک ماسٹر ٹیلر ماسٹر تھا وہ ٹیلر ماسٹر اپنی مشینیں نکال کے لے جا رہا تھا تو میرے بزرگ نے پوچھا بھائی اپنی یہ کیوں لے جا رہے ہو کہتے شہر میں سر گڑبڑ ہے تو میں نے سوچا گھر میں کام کریں گے ہمیں نہیں بتایا کہ جا رہے
2: ہیں
5: مطلب دے ور آل پلانڈ اور ویل ایگزیکیوٹیڈ آلسو تو ہم لوگ پھر اکٹھے ہوئے سارے تو دیر واز نو وے کہ آپ نیچے گھروں سے جاؤ نیچے دروازے توڑ رہے ہیں ہمارے ہم نے نیچے نا پمپ رکھے ہوئے تھے پانی کے بجھانے کے لیے وہ بھی ناکامیاب ہوا سارا کچھ ٹرائی کیا تھوڑا سا پہلے ڈر کے مارے ہم لوگ سب بھاگے ہم لوگ تین بھائی تھے جو ہماری سسٹر تھی وہ پہلے انڈیا میں آ رکھے تھے اس میں سیفٹی کے لیے تو وہ آگ جو تھی انہوں نے ہمارے گھروں میں لگا دی ہم ہریڈلی اوپر سے گولیاں چل رہی ہیں تو چھتیں
2: ٹاپ کے
5: جو لاہور میں جو مکان تھے جڑے ہوئے تھے
2: جڑے ہوتے تھے
1: اور گرمیوں کا موسم رہا ہوگا اگست کا
5: موری گیٹ میں لاہور میں نا 12 گیٹ ہے ایسے لاہور گیٹ شالی گیٹ موچی گیٹ ایسے تھے
2: تو وہ دلی میں بھی ویسا ہی موری گیٹ ہے اور
5: ایک روڈ کے اوپر ہی تھے سارے ہمارا جو تھا موری گیٹ تھا لاہور گیٹ کے ساتھ
2: اچھا
5: تو نارکلی بھی نیئر بائی تھا تو اس سامنے سے گولیاں چل رہی ہیں ہم لوگ ڈر کے مارے بھاگ رہے ہیں بوڑھے بھی ہیں بچے بھی ہیں میں بھی تھا چھوٹا تو وہ کراس کرنا شروع کر دیا الٹیمیٹلی ویج ہم ایک جگہ ایسی جگہ پہنچے جہاں کے مسلم کا گھر ہے وہ سامنے تو گلی چھوٹی سی تھی اتنی چھوٹی تھی کہ اس نے سامنے ہمارے جو کھڑا تھا چاقو لے کے لڑکا کھڑا تھا مسلم بوائے اس کا گھر تھا وہ
2: جی
5: تو ہم لوگ ڈر گئے سارے کہ یہ چاقو مارے گا تو ہم تو جاتے ہیں تو جب ہم نے کوشش کی اس کو پوچھنے کی تو اس نے کہا سر آپ ڈرو نہیں آپ آ جاؤ میں آپ کی ہیلپ کروں گا اس نے چارپائی لائی اور ہمیں کراس کرا کے چھوڑ دیا اس کو کراس کرنے کے بعد ہم جو پہنچے ہیں تو تھوڑے سے ہندو مزہ میں پہنچ گئے
2: اپنے ایریا میں آ گئے
5: تھوڑا سا ہم ہندو ایریا میں پہنچ گئے تو وہاں جا کے ہم نے پھر جو موری گیٹ کا بازار تھا اس کو کراس کرنے کے لیے लोज आर्मी वाज कंट्रोलिंग वो सबसे पैसे ले रही थी पैसे दो इतने हर एक आदमी जो जाएगा तो हमारे पास तो पैसे थे नहीं बिल्कुल खाली थे हम तो हमारी बारी लास्ट में आई तो जब हम मोहल्ले में पहुँचे तो फिर हम कैंप में चले गए तो कैंप में हमें हमारे पास कोई चीज़ नहीं थी जो मेरा ब्रदर था बड़ा वो टावल में आया था
2: बताइए
5: मेरे फादर निक्कर में थे वो स्काउट के भी इंचार्ज थे समथिंग इन द ऑफिस मुझे नहीं याद लेकिन वो भी थे ऐसे हम क्रॉस कर रहे थे तो डी ए वी कॉलेज कैंप में हमें आके रखा गया तो खाने को फर्स्ट डे को खिचड़ी मिली जो गर्म थी ना खाई बनती है हाथ में लो तो फेंक तो दैट वॉज द कंडीशन हम उस समय लेकिन हमें इतना महसूस नहीं हुआ कि हम इतने खराब टाइम से निकल रहे वी थॉट दिस इज प्रोसेस ऑफ टाइम
1: टेम्परेरी एक्सीज
5: हमें बिल्कुल आज़ादी का कुछ
2: पता कोई आइडिया नहीं था
5: बल्कि मैं ये कहूँगा कि मेरे से ज़्यादा आज़ादी का मज़ा इन्होंने लिया है जो कि दिल्ली में थे शी वॉज लकी टू बी एट दैट टाइम इन दिल्ली तो मैं तो बिल्कुल हम तो बिल्कुल नेगेटिव विचार भी थे उस समय कि ये क्या हो गया लेकिन
1: आप लोगों ने समझा कि ये दंगे भड़के हैं कुछ दिनों में शांत हो जाएंगे फिर थिंग्स विल बी बैक टू नॉर्मल
5: वापस आएंगे
2: इस चीज का कोई आइडिया नहीं कि ये घोरों ने हिंदुस्तान को छोड़ दिया है इस चीज का कुछ अंदाजा नहीं
5: ये अंदाजा था कि वो चले गए हैं
2: चले गए
5: लेकिन ये नहीं था कि हिंदू मुस्लिम इकट्ठे नहीं रहेंगे उस समय तो ये विचार था कि हम ये
2: एक भड़की है आग हाँ
4: छोटा सा ब्रेक लेते हैं
2: जी जी जी बहुत ही इमोशनल माहौल हो रहा है
1: नितिन जी
4: मेहमान को हम जोड़ेंगे और उसके बाद में फिर हम रेखा जी से भी बातचीत करते हैं तो एक जो
2: छोटा सा ब्रेक
4: है जो वो बंटवारा फिल्म का ही है उसको सुनते हैं